एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 6 जून सन 2026 है। स्टूडियो घड़ी में सवेरे के 5:59 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ है।

0: ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगी, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।

श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अर्थात बीती हुई बातों का शोक नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो वर्तमान काल के अनुसार कार्य करते हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 211। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनिएगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सीने संगीत में तबले का दौर, भाग सुनेगा आज 6। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनी, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के।

हिंदी समाचार 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर और दोपहर 2 बजे त्रिवेणी। सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 2:30 से।

त्रिवेणी सुबह 8:15 से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुनेगा सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। इसके अंतर्गत सुनिएगा लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11:00 रात्रि 11:00 से चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से मैटनी शो, दिन में 12:00।

दोपहर 3 बजे से आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत। नाट्य तरंग सुनिएगा दोपहर 3:30 से। नाटक पोस्टमैन का पहला भाग के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद P.S. कृष्णस्वामी, निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे पिटारा के अंदर बॉम्बे टॉकी सुनिएगा। इसके अंदर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग सुनवाएंगे आपको। छाया गीत का पुनर्प्रसारण शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने शाम 5:30 से। झरोखा शाम 6:30 से। 6:35 से संध्या रंजन विशेष जयमाला सुनिएगा शाम 7 बजे से। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं समाज सेविका साहित्यकार सुधा मूर्ति, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनवाएंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा जिज्ञासा। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा नाटक गुलाब की पंखुड़िया भाग 1, लेखन सुरेंद्र कांत का, निर्देशन मुमताज शकीब। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से। छायागी सुनेगा रात 10 बजे से आलेख एवं स्वर जयप्रकाश मीणा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और ढलती जाए रात 10:30 से।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

0: जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की छठी कड़ी आज हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, ख्याल गायन में तबले पर जो संगति की जाती है और जो तालों का उपयोग होता है, खासतौर से तीन ताल और एक ताल,
2: हाँ जी,
1: तो शुरुआती दौर में संगीतकारों की ये ताल बड़े पसंदीदा रहे हैं।
2: जी हाँ,
1: इसके बारे में आप कहेंगे।
2: हाँ, जैसे मैंने कहा कि शास्त्रीय संगीत में जो संगत के लिए जो ताल चुने गए हैं,
1: जी,
2: जैसे ख्याल गायन में तीन ताल में ख्याल होते हैं, एक ताल में ख्याल होते हैं,
1: जी जी,
2: कुछ झपताल के भी ख्याल है, तो ये ताल जो है, इन तालों का प्रयोग फिल्मी गीतों में भी हुआ है। तो ये जो ताल है, ये ताल जैसे अभी ख्याल की संगत के लिए एक ताल हम लोग जो बजाते हैं,
1: जी,
2: तो एक ताल में जो है उसमें विलंबित एक ताल,
1: जी,
2: तो विलंबित का मतलब ये है कि दो मात्रा के बीच वाला फासला बड़ा किया है, उसको और भी बड़ा किया तो वो अति विलंबित हुआ, दो मात्रा के बीच वाला फासला कम होता गया तो वो मध्यलय, और भी कम हुआ तो वो द्रुतलय। ये जो है, ये फासला मतलब एक गणित है और उसी गणित के तौर पर वो ठेका उसका बनता है। अभी एक ताल का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, तो एक ताल तो है धिन धिन धागे त्रक तू ना कत्ता धागे त्रक धीना धिन धिन। अब ये ख्याल में विलंबित इसको बजाते हैं, तो मैं अति विलंबित में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन विलंबित किस तरह से बजाते,

0: मतलब ये जो है धिन धिन, ये इतना जो अवग्रह है दो मात्रा के बीच में
1: जी,
0: तो उससे वो ताल विलंबित हुआ। विलंबित होने का फायदा ये है कि ख्याल गायन में गायक जो है उसको बड़ा फासला मिल गया गाने के लिए
1: जी,
0: तो अपनी प्रस्तुति वो बड़े आराम से फिर दे सकता है। अगर इसमें जो है ना सम और काल का ये चक्र है, ताल मतलब तो सम काल का चक्र है
1: जी जी,
0: तो सम की तो अपनी अपनी अहमियत है, सम पर आने के लिए ही सारी जो प्रस्तुति होती है वो उसके लिए ही तड़पती रहती है, मुझे सम पर आना है
1: जी जी।
0: तो सम पर अगर आना है तो उसके लिए हमें गाने के लिए फासला मिल गया और उसके बाद में हम सम पे आए, तो श्रोताओं को तभी आनंद मिलता है जब वो सम पे सब लोग आकर मिलते हैं एक साथ। तो ये जो है ये एक ताल वाला गणित है। तो ऐसे ही सारे ताल है, जपताल है, रूपक है, तीन ताल है,

0: एक ताल में निबद्ध बसंत बहार फिल्म का गीत आपने सुना श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे के स्वरों में, संगीतकार शंकर जयकिशन। रविंद्र जी, प्रतिभाशाली संगीतकारों ने जैसे एक ताल का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया है फिल्मी गीतों में,
1: जी
0: उसी प्रकार झपताल का भी प्रयोग हुआ है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: आपकी राय क्या है?
1: दस मात्रा का झपताल जो है
0: जी,
1: मतलब दस मात्रा में किसी गीत को ढालना, तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और वो चुनौती इसलिए है क्योंकि ताल जो है उसमें सम है काल है
0: जी,
1: मतलब झपताल जो है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी
0: जी।
1: अभी ये जो है ये इतना बड़ा आवर्तन है दस मात्रा का, उसमें पहले धी पर सम है
0: जी,
1: फिर काल है, उसके बाद में फिर सम है, तो ये जो सम काल का गणित होता है इसको रखते हुए वो गीत बनाना, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो मशहूर गीत।
0: हाँ,
1: इसलिए भी इस चीज को मानते हैं। इतना प्रतिभा संपन्न हमारा ये संगीतकारों का दौर रहा है फिल्मों
0: जी,
1: में
0: जी, जी,
1: कि उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत बनाए और जो भी बने हैं सब लाजवाब है।
0: बेशक। झपताल में निबद्ध कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए?
1: वैसे तो कई सारे गीत है
0: जी।
1: आवाज देके हमें तुम बुलाओ,
0: प्रोफेसर फिल्म का गीत है
1: जी,
0: जो राग शिवरंजनी में आधारित है
1: जी।
0: तो श्रोताओं सुनते हैं शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद।

0: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की छठी कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष।

श्रोतो अभी आप राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे, जिन्हें हम हमारे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

नमस्कार श्रोताओं, आपका रेडियो दोस्त एक बार फिर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कार्यक्रम विवरण, मौसम और स्थानीय समाचारों के बारे में बात करेंगे। आइए आगाज करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का सुविचार के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए बात करते हैं लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जयंती के बारे में। गोपीनाथ बोरदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने असम को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जयंती पर हम उनके समर्पण और दूरदर्शिता को याद करते हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के राहा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बुद्धेश्वर और माता का नाम प्रश्नेश्वरी बोरदोलोई था। 12 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का निधन हो गया। इसके बावजूद उन्होंने शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की। उन्होंने कॉटन कॉलेज से मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास किया और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और गुवाहाटी लौटकर वकालत का अभ्यास शुरू किया। ये महात्मा गांधी की अहिंसात्मक सिद्धांतों के अनुयायी थे और असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया था। 1921 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की और 1922 में गिरफ्तार भी हुए। सन 1932 में गुवाहाटी नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में असम के पहले मुख्यमंत्री बने। इनका कार्यकाल जनता के कल्याण और असम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित किया जाता है। सन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत असम को बंगाल और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के साथ शामिल करने का खतरा था। गोपीनाथ बोरदोलोई ने इसके विरोध में महात्मा गांधी और कांग्रेस नेताओं का मार्गदर्शन लिया और अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से असम की अलग पहचान और अधिकार सुरक्षित किए। उनके साहस और दूरदर्शिता के कारण ही असम भारत के नक्शे में सुरक्षित रहा और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, में शामिल नहीं हुआ। इनके प्रयासों से कामरूप अकादमी, बरुआ कॉलेज, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम मेडिकल कॉलेज और अन्य तकनीकी संस्थाओं की स्थापना हुई। इन्होंने भूमि सुधार लागू किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार किया और साथ ही साथ शरणार्थियों की मदद के लिए पीस ब्रिगेड बनाई। इन्होंने प्रशासन की सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण को मिसाल के रूप में जाना जाता है। तो आज के इस जयंती के अवसर पर गोपीनाथ बोरदोलोई के आदर्शों का पालन करना और उनकी सेवा भावना को याद करना परम आवश्यक है। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा देता है और साथ ही साथ दर्शाता है कि निडरता, दूरदर्शिता और जनता के प्रति निष्ठा किसी भी प्रदेश की पहचान और समृद्धि की रक्षा में हमेशा निर्णायक भूमिका के रूप में कार्य करती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब बात करते हैं खेत बचाओ अभियान के बारे में। 1 जून से 30 जून 2026 तक पूरे भारत में किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और टिकाऊ खेती के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बचाना, कृषि लागत घटाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल संरक्षण और स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना। इस योजना के अंतर्गत कृषि से संबंधित प्रमुख गतिविधियां मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसानों को उनकी मिट्टी की वास्तविक पोषण जरूरतों के अनुसार उर्वरक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, साथ ही साथ संतुलित पोषक प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण की जानकारी दी जाती है। सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि यंत्रीकरण और अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद की जाती है। लेजर लेबलिंग भूमि समतल करने की एक टेक्निक है। मौसम आधारित फसल चयन और जल संरक्षण आधारित कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण खेत स्तर पर दिया जाता है। और किसानों को होने वाले लाभों की अगर हम बात करें तो मिट्टी की उर्वरकता और जमीन की दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखते हैं, साथ ही खेती की लागत में कमी आती है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है, फसल की गुणवत्ता में और विविधता में सुधार किया जाता है, सरकारी योजना और सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता है और सतत और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए इस अभियान में प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य नारा है कि मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ और

और जल संरक्षण आधारित कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण खेत स्तर पर दिया जाता है। और किसानों को होने वाले लाभों की अगर हम बात करें तो मिट्टी की उर्वरकता और जमीन की दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखते हैं, साथ ही खेती की लागत में कमी आती है, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है, फसल की गुणवत्ता में और विविधता में सुधार किया जाता है, सरकारी योजना और सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता है और सतत और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए इस अभियान में प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य नारा है कि मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ और संतुलन में वृद्धि होती है। बात करें अगर हम आसनों की तो जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन और वीरभद्रासन से मांसपेशियां मजबूत होती है जो हमारे जोड़ों और रीढ़ की हड्डी की गति और स्थिरता को सुधार करती है। योग से रक्त परिसंचरण बेहतर होता है जिससे हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार आता है और साथियों स्ट्रोक और हृदय रोग का खतरा बहुत कम हो जाता है। श्वसन अभ्यास जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं उससे हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं और सांस लेने की क्षमता सुधरती है। योग हमारे वजन को नियमित और नियंत्रित करने में सहायक है, साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है, सक्रिय बनाता है और हमारे शरीर में मौजूद फैट को भी कम करता है। इससे हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी सक्रिय प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम और स्वास्थ्य तकनीकों के माध्यम से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर घटता है और चिंता अवसाद और नींद की समस्या में सुधार आता है। हमारी योग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और हमारे शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रोग जैसे बीपी, डायबिटीज, गठिया, अपच, मांसपेशियों के दर्द आदि को कम करने में योगदान देता है। हमारे शरीर में लसीका तंत्र सक्रिय होकर शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है और संक्रमण से लड़ने की शक्ति बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त तनाव प्रबंधन और मानसिक शांति, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और नींद और ध्यान शक्ति में सुधार, रोग प्रतिरोधक क्षमता और संपूर्ण स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए योग परम आवश्यक है। इसीलिए श्रोताओं, योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है बल्कि यह तनाव कम करने की साथ ही हमारी जीवन शैली को सुधारने की और मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक संपूर्ण माध्यम के रूप में ये कार्य करता है।

श्रोताओं नमस्कार। झालावाड़ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 7:30 पर यानी कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 8:00 दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण किया जाएगा। 8:15 पर श्रोताओं आप सुनेंगे कार्यक्रम आकाशवाणी @90। और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रेडियो श्रोता दीपिका भारद्वाज से बातचीत। 8:30 पर महिला जगत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे। सुबह 9:00 आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके बाद विविध भारती कार्यक्रमों का आप आनंद लेंगे।

शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रत्येक शनिवार की तरह कार्यक्रम पत्रों पर आधारित आपकी फरमाइश। फिल्म संगीत कार्यक्रम का एक बार फिर आप आनंद लेंगे शाम 6:05 पर और रात्रि 8:15 पर। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी और हर रोज की तरह सबरस कार्यक्रम होगा रात्रि 9:00।

0: श्रोताओं, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम विवरण।
1: परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन

श्रोताओं, ये गीत है फिल्म बात है प्यार की। मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल की युगल गायकी को आपने सुना है। बोल लिखे हैं आमिर कजलवाश ने और संगीत निर्देशन विजय बतालवी का। आपकी और हमारी प्यार की बात चल रही है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नवाब आरजू का लिखा हुआ ये गीत अनु मलिक ने संगीत निर्देशित किया है। अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में श्रोताओं ये गीत फिल्म बाजीगर से अभी आप सुन रहे हैं। श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बादशाह हूँ फिल्म का ये गीत नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान ने मिलकर गाया है। मनोज मुंतशिर के बोल हैं और संगीत निर्देशन तनिष्क बागची का है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

शुद्ध ये गीत है फिल्म आंटी नंबर वन से विनोद राठौर, ज्योत्सना और उनके साथियों की आवाजों में ये गीत आपने सुना है। बोल लिखे हैं समीर ने और आनंद मिलिंद का संगीत निर्देशन। श्रोतों, आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात सुनेंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

0: प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी

0: और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: क्लेम्स बाय पाकिस्तान वुड नॉट चेंज दिस फंडामेंटल रियलिटी।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई।

0: और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में लीजिए सुनिए रेडियो श्रोता दीपिका भारद्वाज से धर्मेंद्र कुमार की बातचीत।
3: नमस्कार श्रोताओं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ध्येय वाक्य के साथ हमारी और आपकी अपनी आकाशवाणी ने अपने शानदार 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस खास मौके पर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे साथी जिनके दिन की शुरुआत और रात का अंत रेडियो के साथ ही होता है। स्वागत करते हैं आपका।
4: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी के 90 स्थापना दिवस की ढेरों बधाइयां।
3: सबसे पहले तो हमारा यही सवाल

0: है कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: मैं दीपिका भारद्वाज, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा एक छोटा सा भरा पूरा परिवार है जिसमें हम 5 सदस्य हैं। सुबह से लेकर रात तक घर की जिम्मेदारियाँ, सास ससुर की देखभाल और मेरे छोटे बेटे की शैतानियों के बीच मेरा समय कैसे बीत जाता है यह मुझे पता ही नहीं चलता।
0: दीपिका जी, सबसे पहले तो हम कार्यक्रम में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपका रेडियो से परिचय कब हुआ, आपने इसे सुनना कब से शुरू किया?
1: वैसे तो रेडियो मैं बचपन से ही सुना करती थी, क्योंकि मेरे दादाजी हम सोते रहते थे तो सुबह भजन चला देते थे, तो मेरी नींद उनकी भजन की आवाज़ों से ही खुलती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, समझदार हुए, तो मैंने रेडियो सुनना शुरू कर दिया।
0: दीपिका जी, यह तो आपके बचपन की बात हुई कि आपने आपके दादाजी के द्वारा जो रेडियो सुना जाता था उससे आपने अपना सफर शुरू किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कब रेडियो आपका साथी बन गया?
1: वैसे तो रेडियो, जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन से ही सुना करती थी, लेकिन फिर मेरी शादी हुई, मैं एक गृहिणी बनी, तब मुझे रेडियो सुनना ज़्यादा पसंद आने लगा, क्योंकि मैं अपने घर के कार्य करती करती रेडियो पर गाने सुनना, सखी सहेली में वो बातें करती हैं सखियाँ, उनके बारे में सुनना मुझे अच्छा लगने लगा।
0: आपकी सुबह की शुरुआत रेडियो के साथ ही होती है, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे कौन से माध्यम के द्वारा रेडियो सुनना पसंद करती हैं?
1: जैसा कि पहले तो रेडियो वो

0: पसंद आने लगा, क्योंकि मैं अपने घर के कार्य करती करती रेडियो पर गाने सुनना, सखी सहेली में वो बातें करती हैं सखियां, उनके बारे में सुनना मुझे अच्छा लगने लगा।
1: आपकी सुबह की शुरुआत रेडियो के साथ ही होती है, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे कौन से माध्यम के द्वारा रेडियो सुनना पसंद करती हैं।
0: जैसा कि पहले तो रेडियो वो पुराना लकड़ी वाला बल्ब रेडियो हुआ करता था, उस पे सुनते थे, लेकिन अब मैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर रेडियो सुनती हूँ। और एक मेरे पास रेडियो भी है जो मेरे पापा ने मुझे शादी के टाइम पर दिया था।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पिताजी ने आपको शादी में जो रेडियो दिया था, और उसको आप अपने जीवन साथी के साथ साथ अपने हमसफर मानते हुए अपना सफर तय कर रही हैं। तो दीपिका जी, आपको कौन से प्रोग्राम सबसे अच्छे लगते हैं?
0: वैसे तो आकाशवाणी के सारे ही प्रोग्राम कार्यक्रम मुझे रोचक मनोरंजन लगते हैं, लेकिन जैसे कि मुझे सबसे अच्छा लगता है सखी सहेली, आज के फनकार, फरमाइशी गीत, नए पुराने गाने मुझे बहुत पसंद हैं।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप विविध भारती के कार्यक्रम भी सुनते हैं, और स्थानीय चंद्रभागा चैनल से भी आप कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप स्थानीय जो झालावाड़ केंद्र का चंद्रभागा चैनल है, उनसे कौन कौन से कार्यक्रम सुनना पसंद करती हैं?
0: झालावाड़ के आकाशवाणी चैनल पर मैं शनिवार रविवार दोनों दिन ही प्रोग्राम सुनती हूँ। शनिवार को तो लेटर द्वारा होता है और रविवार को फ़ोन करके फरमाइशी प्रोग्राम होता है, और मैं कई बार फ़ोन भी लगाती हूँ। बहुत बार मेरा फ़ोन मिल भी जाता है, नहीं मिलता है। एक बार मेरा फ़ोन लगा तो मैंने अपना फरमाइशी प्रोग्राम सुना, उससे मुझे बहुत अधिक खुशी मिली। और शुक्रवार को जैसे साप्ताहिक प्रोग्राम आता है आपकी सेहत, उसमें भी डॉक्टर आते हैं बहुत सारे, तो हमारे बचाव उपाय, बीमारी रोकथाम के बारे में हमें बताते हैं।
1: जैसा कि दीपिका जी आपने बताया है कि स्थानीय जो चंद्रभागा चैनल है, उससे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें विशेषकर आप शनिवार को जो हमारा पत्रों पर आधारित कार्यक्रम होता है, और रविवार को फोन इन कार्यक्रम भी आप सुनना पसंद करती हैं। तो दीपिका जी, इसी के साथ अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप विविध भारती के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको सुनना बेहद पसंद है?
0: विविध भारती के तो सारे ही कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन विशेषकर आज के फनकार है, संगीत सरिता है, हवा महल की झलकियां हैं, भूले बिसरे गीत हैं, ये सब मेरी दिनचर्या का अटूट हिस्सा है।
1: बिल्कुल दीपिका जी, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी विशेषता है कि आप आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनती हैं?
0: आकाशवाणी के कार्यक्रम मुझे सुनना इसलिए पसंद है क्योंकि इस पे सब तरीके की जानकारी हमें दी जाती है। या तो हम टीवी देखना इतना वो नहीं करते, टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम इसको तो अपना काम करते करते भी रेडियो सुन सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सखी सहेली प्रोग्राम आता है, उसमें दो सखियां आपस में बात करती हैं, अपने सुझाव व्यक्त करती हैं। हम घर रहकर भी कैसे अपने आय का साधन बना सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर आते हैं शुक्रवार को, तो वो हमारे बारे में अलग अलग बीमारी रोकथाम, जैसे मेरे एक छोटा बेटा है तो कब टीका लगवाना है, कब पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी, इन सब के बारे में मुझे जानकारी मिलती रहती है।
1: जैसा कि आपने बताया है दीपिका जी कि आपको विविध भारती के ढेर सारे प्रोग्राम, जिनमें विशेषकर सखी सहेली, पिटारा, फरमाइशी गीत, गाने नए पुराने, और बच्चों के जो विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम आते हैं, जिन्हें आप भी सुनती हैं और आपके परिवार के सदस्य भी इन कार्यक्रमों को सुनते हैं। तो दीपिका जी, ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहती, यानी आप जरूर सुनती हैं?
0: मैं वैसे तो सारे प्रोग्राम सुनना पसंद करती हूँ, लेकिन सबसे अच्छा प्रोग्राम मुझे सखी सहेली लगता है, क्योंकि इसमें जब दो सखियाँ आपस में बातें करती हैं, उनकी बातें सुनना, उनके सुझाव, उनकी समस्याएं, और कुछ कुछ बातें हमसे मिलती हुई भी रहती हैं, तो हम जैसे घर पे रहकर कैसे घरेलू उत्पाद से हम आय का साधन बना सकें, कैसे घर की चीज़ों को हम उपयोगी बना सकें, इसलिए मुझे सखी सहेली खाने के बारे में, बताती हैं, वो व्यंजन के बारे में सब कुछ बताती हैं हमें और सब प्रकार की जानकारियां हमें सखी सहेली देती हैं। इसलिए मुझे सखी सहेली प्रोग्राम बहुत अधिक पसंद है। और जो चंद्रभागा चैनल है हमारा, उससे नारी लोग महिला जगत प्रोग्राम आते हैं, मैं उन्हें भी सुनती हूँ, क्योंकि हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए ही रहता है कि हमें कैसे

0: आगे उन्नति करनी है।
1: दीपिका जी, अब हम जानना चाहेंगे कि 90 साल का जो ये सफर आकाशवाणी ने तय किया है, तो कोई ना कोई ऐसी खास घटना आपको याद है जो रेडियो से जुड़ी हुई हो और आपको अभी तक भी याद हो?
0: वैसे तो अभी की तो कोई घटना नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तो मेरे पापा जी जब लाइट नहीं आती थी तो रेडियो पे जैसे मैच आता हुआ रहता था, तो अपने रेडियो को अपने कान के पास लगाकर उस मैच के बारे में सुनते रहते थे। कभी चौका कभी छक्का लगता था तो हम भी आवाज जोर से निकालते थे। यही हमारी यादगार यादें हैं।
1: बिल्कुल, 90 के दशक के क्रिकेट मैचों की रेडियो कमेंट्री लगभग सभी लोग सुना करते थे, और जब विशेषकर इंडिया खेल रही होती थी तो पूरे मोहल्ले के लोग हमारे घर पर हमारे आंगन में इकट्ठे होते थे, हमारे एक दूसरे के पास बैठ जाते थे, और कोई भी जब चौका या विकेट गिरता था तो रेडियो के पास कान लगाकर ऐसा सुनते थे जैसे कि आंखों देखा प्रसारण ही हम सभी सुन रहे हों। तो क्या खूब कहा है आपने कि आज की जो नई पीढ़ी है जो स्क्रीन से चिपकी हुई रहती है या मोबाइल में दिन भर रील्स स्क्रॉल करती रहती है, तो जो लोग रेडियो नहीं सुनते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: वैसे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मोबाइल और टीवी जो कि हमारी आंखें खराब कर देती हैं, और रेडियो है जो हमें सुकून देता है। हम ज़्यादा टीवी मोबाइल देखेंगे तो हमारे बच्चे भी वही करते हैं, वही रील्स देखते हैं, क्योंकि बाहर का ज्ञान इनको बिल्कुल होता ही नहीं है। और अगर हम रेडियो सुनेंगे तो अपनी कल्पनाओं की दुनिया गढ़ सकेंगे, और अपना काम करते करते भी हम रेडियो सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे टीवी देखने के लिए तो हमें अलग से वक्त देना पड़ता है, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, और रेडियो तो हम सुन भी सकते हैं और हमारा काम भी कर सकते हैं। बस आप, और रेडियो है जो हमारा वक्त बहुत खूबसूरत बना देता है। जैसे कि कभी गाने आते रहते हैं तो मैं गाने सुनती हूँ तो उसको गुनगुनाती भी रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। एक बार आप रेडियो सुनकर तो देखिए।
1: बिल्कुल दीपिका जी, आपने बताया है कि आप अपना दिनचर्या के रोजाना के कार्य भी करती हैं और साथ ही साथ रेडियो को साथी के रूप में लेकर दिन भर आप गाने सुनती रहती हैं। तो दीपिका जी, ऐसा कोई गाना है जो आप गुनगुनाती रहती हैं या आपको बेहद पसंद है?
0: हाँ, वैसे तो मुझे सारे ही गाने पसंद हैं, लेकिन एक गाना है उसे अक्सर मैं गुनगुनाती रहती हूँ, वो है तेरा मेरा प्यार अमर फिर भी क्यों लगता है डर।
1: बिल्कुल दीपिका जी, चलते चलते अब हम कार्यक्रम में यही जानना चाहेंगे कि आपकी तरह जो भी हमारी गृहिणी हैं और हमारे ये कार्यक्रम सुनती हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं तो सभी महिलाओं से, अपनी बहनों से, सखियों से बस यही कहना चाहूंगी कि रेडियो हमें सब बहनों को सुनना चाहिए, क्योंकि रेडियो पे हमें देश विदेश, घर परिवार, गांव शहर, सब तरीके की जानकारी मिलती है। जो महिलाएं अखबार नहीं पढ़ती हैं उनके लिए भी अच्छा है, और इसके लिए हमें अलग से समय नहीं देना पड़ रहा। हमें सुनते सुनते आप काम भी करिएगा, और हम जो गृहिणी है खास तौर पे उनको तो सुनना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन भी लगा रहता है और हमारा कार्य भी होता रहता है।
1: बिल्कुल दीपिका जी, और आप जैसे श्रोताओं की ही बदौलत है कि 90 वर्षों का स्वर्णिम सफर आकाशवाणी ने तय कर लिया है। आप यहाँ आई, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, और हम यही चाहेंगे कि आप सभी इसी तरह से हमारे रेडियो को सुनते रहें। तो चलते चलते आपके पसंदीदा गीत के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में रेडियो श्रोता दीपिका भारद्वाज से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की बातचीत। कार्यक्रम था आकाशवाणी @90।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ की चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी, सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी, मेहनत की रोशनी हर अंधेरा मिटाएगी। हर सुबह विश्वास जगाकर आगे बढ़ो, हर सुबह विश्वास जगाकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेहनत ही मंजिल दिलाएगी। सुप्रभात, आप सभी का दिन शुभ हो। इसी भावना और कामना के साथ मैं आपकी रेडियो सखी रितिका आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में स्वागत करती हूं। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज हम एक नहीं बल्कि दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, लेंगे मधुर गीतों का आनंद और साथ ही सुनेंगे भेंट वार्ता। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हमारी चर्चा के पहले विषय पर। सखियों, आज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी की जयंती है। सखियों, आज हम असम के महान स्वतंत्रता सेनानी, दूरदर्शी नेता और लोकप्रिय के नाम से प्रसिद्ध गोपीनाथ बोरदोलोई जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। उनका जन्म 6 जून 1890 को हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और असम के विकास तथा सांस्कृतिक पहचान की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री बने और शिक्षा, सामाजिक कल्याण तथा जनहित के कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा की भावना ने उन्हें जनता का प्रिय नेता, लोकप्रिय नेता बना दिया। देश के प्रति उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आइए उनकी जयंती पर हम उनके आदर्शों, देशभक्ति, सेवा,

समर्पण और ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जैसा कि हमने आपको कहा था, आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो महत्वपूर्ण विषय हैं चर्चा के लिए। तो आइए अब चलते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर। सखियों, हम सब जानते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है और चर्चा का विषय भी हमने यही चुना है कि पर्यावरण और महिला सहभागिता। स्वच्छ वायु, शुद्ध जल, हरे भरे वृक्ष और स्वस्थ प्राकृतिक संसाधन ही मानव जीवन को संभव बनाते हैं। लेकिन बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण गंभीर रूप से संकट की ओर जा रहा है। इसका सामना हमें भी करना पड़ रहा है। अगर बात ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अगर हम करते हैं, तो जल, वन और भूमि संरक्षण से जुड़े अनेक कार्यों में ये अपनी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। और अगर बात महिलाओं की करी जाए, तो महिलाओं की जो भूमिका है ऐसे समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। महिलाएं परिवार और समाज की प्रथम शिक्षिका होती है और हम सब जानते हैं कि वह आधारशिला होती है। उसके बिना हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर पाते। वह घर में जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, स्वच्छता तथा वृक्षारोपण जैसी आदतों को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि वो पर्यावरण के महत्व को गहराई से समझती हैं और वह सीधे इससे मन से जुड़ी रहती हैं। और इसी का उदाहरण है भारत में चिपको आंदोलन, जहां महिलाओं ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया। हम सभी का कर्तव्य है कि महिलाओं को पर्यावरण संबंधी निर्णय और कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर दें, क्योंकि महिलाएं स्वयं सहायता समूहों द्वारा वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त अभियान तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसे प्रयास समाज के लिए अनुकरणीय है। और जैसा कि श्रोताओं, आज आवश्यकता है महिलाओं को पर्यावरण संबंधी शिक्षा, जागरूकता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक अवसर दिया जाए। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तब पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और अधिक प्रभावी बनेंगे। हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि जल बचाएंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण करेंगे। मैं तो बस आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगी कि पर्यावरण और महिला दोनों ही जीवन के आधार स्तंभ होते हैं। इनके संरक्षण और सम्मान में ही एक स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध और संतुलित समाज का निर्माण संभव है। स्वस्थ पर्यावरण, सुरक्षित भविष्य। तो बातों का सिलसिला तो हम आगे यूं ही जारी रखेंगे। आइए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और हम सब मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: सखियों, अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे फिल्म कल हो ना हो। सोनू निगम की आवाज़ में ये सुंदर सा गीत, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर, जो है भेंटवार्ता। सखियों, आज हमने भेंटवार्ता में एक महत्वपूर्ण विषय का चुनाव किया है जो हमारे जीवन से सीधे संबंधित है, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन। कहा जाता है स्वच्छता ही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। एक स्वच्छ वातावरण न केवल हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि हमारे जीवन को सुखद, सुरक्षित और स्वस्थ भी बनाता है। घर हो चाहे कार्यस्थल या आसपास का क्षेत्र, यदि हम वहाँ की सफाई नहीं करते हैं और यदि वहाँ पर सफाई रखी जाती है तो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव डालती है। यदि हम साफ सुथरे वातावरण में रहते हैं तो हमारा मन और तन दोनों प्रफुल्लित रहता है। आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, स्वस्थ जीवन के लिए कौन कौन सी हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और किस प्रकार हम सब मिलकर अपने समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए सखियों, हम सब मिलकर सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, बुजुर्ग कह गए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन यह निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे आसपास स्वच्छता ना हो। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर रवि यादव। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार रितिका जी, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा आदर प्रणाम।
1: डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय बहुत ही सीधा, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप यह बताइए कि स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से कितना गहरा नाता है।
2: बहुत ही सीधा और गहरा नाता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे ही स्वच्छता और स्वास्थ्य है। अगर आसपास गंदगी होगी तो वहाँ कीटाणु वायरस बनेंगे, यही कीटाणु हमारे खाने जरिए शरीर में जाकर हमें बीमार करेंगे। अगर हम सिर्फ अपने आसपास सफाई रख लें तो मैं समझता हूँ आधी से ज्यादा बीमारियों को हम अपने आप

0: पड़ता है।
1: हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। जब हम साफ और अच्छा पानी पीते हैं, स्वच्छ पानी पीते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र इससे दुरुस्त रहता है। हानिकारक पदार्थ जैसे टॉक्सिन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं पानी की वजह से। अगर हम सीधे हमारे लीवर या पेट पर पेट के अंदर यूज कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसको उबाल कर पीना चाहिए, दूषित पानी का उपयोग करने से हम बचे।
0: बहुत काम की बात बताई सर आपने। चलिए श्रोताओं चर्चा आगे बढ़ाएं। हम बात कर रहे हैं स्वच्छता और स्वस्थ जीवन की डॉक्टर रवि यादव के साथ। डॉक्टर साहब, एक आम इंसान को अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए?
1: जी रितिका जी, शुरुआत में व्यक्तिगत जो स्वच्छता है इंसान की वो जरूरी है। दिन में दो बार ब्रश करना, रोज नहाना, सबसे महत्वपूर्ण है खाना खाने से पहले और शौचालय जैसी कामों के बाद में आप साबुन से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ अच्छे से धोएं। अपने हाइजीन की पूरी जिम्मेदारी से उसको ध्यान रखें, हम हाइजीन रहें। इसके बाद आहार बहुत जरूरी है स्वच्छ जीवन के लिए। घर का बना खाना हमेशा प्रेफर करें कि घर का खाना खाएं, उसमें हरी सब्जियां हों जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं और शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए एक शक्ति प्रदान करते हैं। नींद और थोड़ा व्यायाम।
0: जी सर, डॉक्टर साहब ये आते बड़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चों को स्वच्छता सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चों में ये आते कैसे विकसित की जाए, आप अपने अनुसार हमें बताइए।
1: बच्चों के मामले में माता पिता और शिक्षकों का दोनों का ही रोल होता है। बच्चे जो सुनते हैं वही सीखते हैं, जो देखते हैं वही अपने अपनाते हैं। अगर आप खुद भी वही चीज अपनाएंगे जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना, अच्छे से वैसे ही करेंगे। इससे वो कहानी कविताओं में खेल खेल में सफाई का महत्व सीखते हैं, वो अपने दैनिक जीवन में भी उसको अपनाते हैं और उनसे बच्चे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर स्वच्छता की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं।
0: बहुत सुंदर तरीका डॉक्टर साहब। आजकल एक और बड़ी समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई है, वो है प्लास्टिक कचरा। यह हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, आप हमें बताइए।
1: प्लास्टिक आज के समय सबसे बड़ा धीमा जहर स्लो पॉइजन का काम करता है। जैसे हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक से पानी की बोतल ही है बिसलेरी की, वो आप एक उदाहरण ले लो, वो सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं हो। यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर रहा है, ये नहीं सड़ने की वजह से ये डिकम्पोज नहीं होते जल्दी से। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, प्लास्टिक के कचरे को या उसे छुटकारा पाने के लिए उसे कहीं पे वेस्ट में पटक देते हैं। उनसे धीरे धीरे उनके जलने से सड़ने से जो जहरीली गैसें निकलती है वो हमारे सांस के द्वारा हमारे अंदर जाकर कैंसर जैसी बीमारियों को हमारे शरीर में बढ़ाने की अहम भूमिका निभाती है। साथ ही माइक्रो प्लास्टिक हमारे भोजन और पानी में भी मिल चुका है। इतनी गहराई तक टिन यार्ड जो बनाते हैं जहाँ पे कचरे इकट्ठा करते हैं वहाँ पे बहुत गहराई तक खड्डे कर रखा है स्टोर के लिए, तो वो हमारे स्वच्छ पानी को भी दूषित कर दिए हैं। तो उससे हमें कहीं ना कहीं हमारे

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सखियों, अब चलते हैं जानकारी की बातों की तरफ। आज जानकारी में हम आपके लिए लाए हैं और हम बात करने वाले हैं अंत्योदय अन्न योजना की। यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रति माह रियायती दरों पर गेहूं, चावल उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह योजना गरीब, भूमिहीन श्रमिक, वृद्ध, विधवा तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, हर परिवार को पर्याप्त भोजन मिल सके। यह योजना देश में गरीबी और कुपोषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि जो हमारा रेडियो का ये जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ जानकारी और चर्चा का विषय ही नहीं है, बल्कि मनोरंजन का भी साधन है। तो आइए हम सब फिर से चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: ये समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, कहा राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की बढ़ोतरी दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश गरीबों के लिए व्यापक अवसंरचना विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया और कहा कि भारत हरित भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। वे आज भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।

0: जयपुर में इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन के इस फूड एक्सपो का कल शुभारंभ किया। ये एक्सपो राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ की ओर से लगाया गया है। एक्सपो का उद्देश्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों, निर्माताओं, डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मंच उपलब्ध कराना है, जिससे व्यवसाय विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फूड इंडस्ट्री, कृषि उत्पादों और के संवर्धन, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: हमारे व्यापारियों के द्वारा फूड एक्सपो का यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, अपने स्टॉल लगाई है और एक छत के नीचे हर प्रकार की ब्रांड, हर प्रकार की चीजों की यहाँ प्रदर्शनी लगाकर निश्चित रूप से व्यापार जगत को एक छत के नीचे लेकर जो ये एक नवाचार किया है, इससे व्यापार बढ़ेगा। इससे हर व्यक्ति, हर ग्राहक और हर व्यापारी एक दूसरे से मिलकर हो सकता है और बहुत बड़ा उद्योग मिल सकता है, व्यापार बढ़ सकता है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। भारत पाक सरहद पर स्थित जैसलमेर जिले में सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: इसमें सीमावर्ती क्षेत्र की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रतिवर्ष 163 का ये ऑर्डर निकलता है, जिसमें कि ये प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी एक चुनौती जो जैसलमेर जिले की सीमा पर हम पाई जाती है वो यही है कि जो पाकिस्तानी सिम है वो यहाँ 3-4 किलोमीटर तक उसका वो फंक्शनल रहता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमने गृह मंत्री महोदय की जानकारी में भी हम लोग लेके आए थे। रूटीन के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक हमारी सालाना एक एक्सरसाइज रहती है, जिसके तहत फिर हम लोग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई भी।
0: राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचारों के लिए आमंत्रण मांगे हैं। विभाग के सचिव डॉ. आरुषि मलिक ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के प्रभावी समाधान, आजीविका बढ़ाने, सतत विकास तथा समाज के कल्याण में योगदान देने वाले नवाचारों को पहचान प्रदान करना और उन्हें व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। विभाग ने ऐसे नव प्रवर्तकों, किसानों, विद्यार्थियों, स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों से अपने नवाचार प्रस्तुत करने को कहा है। इच्छुक प्रतिभागी अपने नवाचार का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। भीलवाड़ा में कल दिन का पारा 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं जयपुर में 7.2,

में 6.6, अजमेर में 6 और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रात का पारा भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस नए मौसम तंत्र का असर अगले दो दिन जारी रहने की संभावना है। इस दौरान आंधी चलने और बरसात होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है।

0: जुड़े। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ पॉडकास्ट श्रृंखला में 4th एपिसोड सुनेंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। भाई, ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
0: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
0: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस उसमें डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिले। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गांव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गांव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गांव वाला हमारे साथ नदी में नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक

0: हम लोग अपनी मनरामा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा

0: कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखें, जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे, जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो। आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव, शहर, पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
0: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
1: क्या ये आपको उपकरण से, जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
0: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं, जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
1: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
0: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिससे हम लोग

0: बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो जीरो फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिससे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
0: आप जिस तरह यह कार्य करके साबित किए, बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का अभी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद का पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9:20

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाज़ों में अमजद नदीम थे गीतकार और संगीतकार भी। लीजिए अब सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। कौसिर मुनीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं साजिद वाजिद और फिल्म का नाम है दावत-ए-इश्क़।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधन आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे पहले।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपनी कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाली इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रहीं फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बने फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
4: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
4: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
4: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था। बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता। सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ? संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफ़ी है। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है। भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूं। और मैं पहुंच गई, इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो, मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूं तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझा।

इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? मां भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो, तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको, इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं, तो टाल दिया करो। संदीप ने समझाते

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया, आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी, वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूं पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए।

हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है। और देखिए, माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना, साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: यह आवाज़ थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथ साथ की ये गजल। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की। ये फिल्म है लेकिन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए मैटिनी शो।

मैटिनी शो में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत को स्वानंद किरकिरे ने ही लिखा है और धुन शांतनु।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। इसमें ये फिल्म 2009 में आई थी और आमिर खान के अलावा आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमिन ईरानी और ओमी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में थे। और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हीरानी ने किया था। गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे और संगीत था शांतनु मोहित्रा का। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो हैं राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी बहुत ही खास भूमिका निभाई और इस फिल्म का केंद्र बिंदु थे बोमिन ईरानी, जिन्होंने प्रोफेसर वीरू वायरस सहस्रबुद्धे के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ओमी वैद्य ने चतुर रामलिंगम जो साइलेंसर के रूप में थे अपनी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई और मोना सिंह मोनिका के रूप में थी। राहुल कुमार को मिलीमीटर के रूप में फिल्म में दर्शाया गया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो थी बहुत ही शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया। और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था। और जैसा कि हमने बताया, शांतनु मोहित्रा ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
0: ये स्वर है सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

लोगों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: तो मैटिनी शो में आज हम बात कर रही हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव, जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे, उस पर एक तीखा व्यंग्य है जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की एक सलाह देता है, संदेश देता है और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म। क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो कैरियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यानी नवाचार, जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए, उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं, तो कई बार उनका पढ़ावा कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
1: जाने नहीं।
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

जी तो आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करें। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएँ वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुँचा रही हैं या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज़्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है और अपनी ज़िंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की ज़िंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करे और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब देख रहा है या सपने देख रहा है। ये बातचीत करने की आज परिवार में बेहद ज़रूरत है, ना कि अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादने की। फिल्म थ्री इडियट्स यही कहती है संदेश।

तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाई देता है जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए तो निश्चित रूप से ये फिल्में हमें कुछ सीखने को तो देगी ही, और आम लोगों से भी फिल्मों का कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि थ्री इडियट्स जैसी फिल्में जब बनती हैं जहां पर किसी विषय को, किसी मजबूरी को, किसी सपने को, किसी सच्चाई को उठाया जाता है, तो वो आम लोगों से कनेक्ट करती है फिल्म, ऐसा माना गया है। ये है थ्री इडियट्स फिल्म का आखिरी गीत, शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे की रचना, शांतनु मोइत्रा का संग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित

0: आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगम नेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सहअध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमरदीप।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया हुआ फिल्म का नाम है आजाद। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत सी रामचंद्र यानी चितलकर का।

कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम गोपी।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

शुद्ध मूवी भारतीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आप कार्यक्रम सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी। कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगी, कृपया कीजिए।

0: ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T-124 रिद्धि नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। वहीं वन विभाग ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। पर्यटकों को नालघाटी वन क्षेत्र में बाघिन T-124 रिद्धि दो नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। पर्यटकों के अनुसार शावक 1 से 2 सप्ताह के हैं तथा इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। 2019 में जन्मी बाघिन रिद्धि प्रसिद्ध बाघिन मछली की वंशज है तथा एरोहेड की बेटी है जो तीसरी बार माँ बनी है। शावक देखे जाने की खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। वहीं वन विभाग की ओर से क्षेत्र में सघन निगरानी और गश्त के निर्देश दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई है। देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आने वाले पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में 23 जून को आयोजित किया जाएगा। और अब मौसम। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बरसात दर्ज की गई। प्री मानसून गतिविधियों के चलते करौली, दौसा, डूंगरपुर, नागौर और जयपुर सहित कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सबसे अधिक 14 मिलीमीटर पानी बीकानेर के डूंगरगढ़ और झालावाड़ के डग में बरसा। 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि विभाग ने 8 जून से फिर से तापमान में बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त की है। इस बीच अगले 24 घंटे तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मेगाराहा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो घड़ी में दिन के 1:05 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए विविध सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।
3: चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग बहुत सफल भी हुए हैं। आज के सभी गीतों में रे का संबोधन है ना? कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये, जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं

समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा हर व्यक्ति को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन भी किया। इससे पहले कल रात उन्होंने

और कहते हैं सुन रे, है ना। बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है, जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए आज का ये पहला गीत।

और कहते हैं सुन रे, है ना। बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है, जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए आज का ये पहला गीत।

तो देखा आपने, सूरज रे जलते रहना, कितना खूबसूरत गीत। हेमंत कुमार की आवाज थी, हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम था, कवि प्रदीप की रचना थी ये, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आपने सुना इस गीत को और महसूस किया होगा कि यहाँ कवि प्रदीप प्रकृति के सबसे तेजस्वी तत्व सूरज से बात कर रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। सूरज रे जलते रहना, बुझना मत,

जलते रहना, कितना खूबसूरत तरीके से गीतकार ने इस गीत को लिखा है ना। हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज खो जाए और ना मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है, मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है, और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना ये जीवन थोड़ा हंसकर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी, इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है, उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है, शेष तीन बुद्धि चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है संकल्प विकल्प, चंचलता दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है, बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे। उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहाँ उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है, खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, शब्द रे। सोना रे

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। पुण्या कर पाए क्योंकि आपको वक्त कम मिला, लेकिन जितना भी मिला उसी में हम इस सफर का आनंद उठाएंगे, क्यों है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में जीवन में छाई उदासी या ग्लानी को एक तरस या प्यास की उपमा के साथ उभारने की कोशिश हुई और एक शब्द को खास कर प्रयोग में लाया गया है गीतों के जरिए, वो भी खास है रे, यानी मन वो उदास हो या धीर कैसे धरे या हो, या सूरज जो जीवन की शक्ति के लिए अपने को जलाता रहे, यही जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए गाने होंगे। आपने भी कुछ गीतों का चयन किया है तो देखिएगा आपके गीत हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी ये पंक्तियां जीवन के एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच को बेहद खूबसूरती से बयां कर रही हैं मंदाकिनी जी। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अंदर से पूरी तरह रीते और थकावा महसूस करते हैं। ये ठहराव जिसे हम प्यास या खालीपन समझ रहे हैं वास्तव में खुद को भीतर से सींचने और एक नई ऊर्जा के साथ खिलने का अवसर है। हमें किसी बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि अपनेपन और सांत्वना की एक बस एक छोटी सी मीठी बूंद की तलाश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मीठी बूंद की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, वो मिलती है कि नहीं ये हमारे अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि कब

अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि कब सुरीला सफर की रेल आए, हम उसमें सवार हों, इबारत को देख अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाएं। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू, देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। एक श्रोता लिखते हैं कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर हौसला रखें और उगते सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, अर्थात परिश्रम करें, आगे बढ़े। मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने इस गीत का चयन किया है और वाकई हमारा अगला गीत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई जिन्होंने ये गीत पसंद किया है या अपनी पसंद में ये गीत शामिल किया है।

रोशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्रलेखा। कितना खूबसूरत गीत, गहरा और सुंदर। दार्शनिक प्रयोग यहाँ पर रे का, देखा आपने, रे का अर्थ यानी यहाँ मन या आत्मा से है। और यहाँ गीतकार जो साहिर लुधियानवी हैं, अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रे मन, तू धीरज क्यों नहीं धरता? इस जीवन की धूप छांव को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे रे मन। मन को समझा, अपने आप को समझा। कितना गहरा गीत, और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है। आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी। और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे

0: श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप इस रेगिस्तानी सफर में गर्मी में आज सुरीले गानों से मन की प्यास बुझाएंगी, मन को शीतलता मिलेगी। बहुत सुंदर। वहीं गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की। नमस्कार, क्या बात है, आज सुरीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो फिर भी इस सफर में शामिल हो गए, और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आज की पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई। वैसे रोज सुबह आ जाती है, मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जुड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तब पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी। मिली ठंडक आपको? वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है। सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है। ये सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है। रात कितनी भी लंबी हो और सवेरा जरूर आएगा। और इसी तरह हमारे जीवन में भी दुख के बाद सुख जरूर आता है। सूरज स्वयं जलकर भी संसार में प्रकाश बिखेर कर परोपकारी बनना सिखाता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए ज्यों ज्यों याद आएंगे जोड़ते जाएंगे। सूरज रे जलते रहना, फिल्म हरिश्चंद्र तारामती, मन रे तू काहे नधीर धरे, और आपने और भी गानों के बारे में लिखा है। तो हमारी जो आज की सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है, उसमें हम आपके गीतों को शामिल करेंगे जो आपने रे के प्रयोग वाले गीत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने। गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: रे,

0: आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने। गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: रे

कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई हैं, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो आपने कह दिया है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है, रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया है, इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए। आपका ये जो है ना मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है, जैसे मैंने कहा श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। जी एल रावल के बोल थे और सोनिक ओमी का संगीत। कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग, जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान प्यासा हो यह तो संभव है, लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। जहां सूखा होता है वहां भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहां कोई नहीं वहां रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं, एक बूंद मिल जाए, प्यार की एक बूंद, पानी की एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है, लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूं कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है, वो बूंद काफी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए? सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो था ही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा, कल आप सुन रही थी, बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहां कहां से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे ना पिए, धीर धरे, ओ रे पिया, रे कबीरा, नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर, मोहलिया रे, क्या

बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने यही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल, आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागरी दिल्ली से मोल मंगाई रे, दो बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था, क्योंकि रोजाना सुहाना सफर की सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहाँ रेडियो बजता रहता है, FM रेडियो बजता रहता है, और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

वाणिज्यराम को आपने सुना, फिल्म का नाम था गुड्डी और गुलजार साहब के बोल थे वसंत देसाई का संगीत था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी आवाज में एक खनक है, आप मुस्कुराते हुए गीतों को लेकर आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज की इबारत कुछ अलग सी बड़ी प्यारी लग रही है, बस हम थोड़े बिजी हैं पर आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहिएगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया था, मानो दिल का रेगिस्तान बन गया था, अब पोस्ट आ गई है तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है, मेघा रे बदरा छाई रे, खाई है रे हमने कसम, जा रे वाह और बोले रे पपीहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है। आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था, दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे, क्या बात है ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर दे रे, ये गाना आपकी लिस्ट में है, बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहाँ आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज में ये गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वही एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना चंदा रे मेरी मोरी पतिया ले जा, वाह जा रे जा बालम वा, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओ रे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे, वाह क्या बात है कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है, रे मन सुर में गा ओ रे ताल मिले नदी के जल में, यह तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया, पिया तो से नैना लागे रे, क्या बात है रे माँ तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात। साथी रे सुनिए आप। साथी रे ये रे हमारी जान ले लेता है ना,

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, ये गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा चैतन्य वैराग्य अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से गीतकारों के माध्यम से, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघारे मेघारे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आएं। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है, सूरज है, चांद है को व्यक्ति के रूप में अपने खास प्रेमी के रूप में, महबूब के रूप में, अपनेपन के रूप में देखता है, तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात, वो जो प्रार्थना, वो जो इल्तजा, वो जो प्रेम की बौछार, वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक, उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना, रे का प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम।

0: मन से मन का बंधन सच्चा बाकी बंधन झूठे कभी अपना साथ न छूटे।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं, रे बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यहीं थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

0: The match will be held at 6:30 p.m. Earlier, India secured its place in the final by defeating Bhutan 1-0 in the semi-finals. India has won this title 5 times so far. In hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Takamigahara in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. An Indian benchmark indices extended their losing streak into the second consecutive week, weighed down by persistent global headwinds. The Reserve Bank of India's supportive liquidity measures and currency stability initiatives provided some support to market sentiment, but a downward revision in growth projections dampened investor confidence. During the week, the 30 share Sensex at BSE lost 533 points to close at 74,243. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi holds meeting with his Economic Advisory Council to further boost India's economic growth. RBI simplifies rules for FPIs in government securities to make investment in India easier. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. CBSE extends last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यम

0: विविधता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की

0: यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत

0: रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम

0: साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम
0: है कि बीते दिनों की गर्मी

बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल

बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करें।

तालियां, श्याम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां, राधा संग कान्हा का रास जहां चला दे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहां।

0: इंतजार है।
1: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
2: यह आवाज आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज्वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का। और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत SD बर्मन का।

अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट श्रृंखला में पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी, जिसे हमने रिले किया था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। श्रोताओं, आइए आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम में।

रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल के लिए किस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूँ नाचो। गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: ये गुलाम कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है। आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदाने जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी। आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब के चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साए में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियायत तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमी बोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ

0: वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
1: जो हुक्म वाली जा।
2: तस्लीम।
0: तस्लीमात, तस्लीमात। क्या नाम है तुम्हारा?
2: मेरा नाम एमिली है, योर मैजेस्टी।
0: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम?
2: जी, योर मैजेस्टी।
0: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
2: आलम पनाह, आलम पनाह।
0: बिल्कुल ठीक। तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
2: जी जी हाँ, जान पाना है, यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
0: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
2: ओ, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल है। हम यहाँ आपकी आपकी पनाह में रहने चाहता है।
0: ठीक है एमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
2: ओ थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा। बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
2: ओ नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते। हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
0: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो।
2: ओ जय पाना, आप कितनी अच्छा है, कितना खूबसूरत है आप।
0: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
2: ओ, ओ शुक्रिया आलिम पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
0: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
3: जी हाँ जहां पना, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
0: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
3: जी हाँ आलम पना, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
0: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं। लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
3: जी हां जहांपना, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
0: नवाब
3: जहांपना,
0: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
3: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
0: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा

0: इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
1: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपे।
0: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
1: जी अली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
0: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
1: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटी

0: पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरतअंगेज हो चली हैं। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
0: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपाही के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलम पना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कुछ भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
0: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे यह जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां? फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
1: वो कमीनी कहाँ है?
3: जी बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
0: जहां पना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है, उस बदजात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस सराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ बराबर के खेमे में है वो बदजात।
0: जी अलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो, इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं, फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है।
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
0: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्त मेजर मुनरो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर।
1: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
0: जहां पना, ये तो अंग्रेजों की तोपें हैं।

0: पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
1: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
0: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
1: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़े जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है, हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जय पना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेजिया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 मेरा मतलब है 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
1: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
0: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बच

0: दाता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलमपना, सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

केप। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: सोया था नस नस में, अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: और तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके? मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूँ इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से। हाँ। जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी 8 भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूँ। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ, मुंबई में कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता। हाँ। और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन, जो ऐसा वाला फील था, किसी के भी घर में आना जाना।

0: टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो
0: था नहीं। और यू नो लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने मतलब इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे यू नो इर्द गिर्द जो यू नो नेबर्स थे या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नज़र से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे या फिल्मों में, या डांस करता था, तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते थे, आजा बुला बुला इसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूँ कि आज टेरेस आए, अभी टेरेस नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टेरेसा हाई स्कूल, तो मैं रहता था अंधेरी में। लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टेरेसा हाई स्कूल, हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर के एजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरनमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट्स सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूँ कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे, तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन हाँ। की तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बोनियम, ओके,
1: बोनियम का, ओके,
0: बोनियम 1975 में। तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन।
0: तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है, अजीब दास्तां मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सबको चाहिए था, तो वो लिखती थी, तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं कि नहीं, तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में, तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ
0: तो...
1: भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब,

0: तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, और पढ़ाई में भी मैं होशियार था। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई, तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और मैं आपको लिख के देता हूँ कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज़्यादा लेकर आऊँगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो ज़िद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
0: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा लक्की हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप, तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाता है।
0: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं, वो डर मेरा चला गया। तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया। तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, लिए अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज़्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
1: की थी,
0: यानी उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में

0: हमारी बहनें थी, मेरी चार बहनें थी, मेरे तीन भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे. तो जब भी उनका उन पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्हें कि आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए.
1: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान हाँ, के बारे में दिलचस्प हाँ, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है.
0: अच्छा,
1: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस.
0: बहुत बहुत शुक्रिया.
1: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, आप सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
0: एग्जैक्टली. क्योंकि देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था तो मेरा 88% निकल गया था. फिर मैं तीन मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे. तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए. फिर वहाँ से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया.

0: फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहाँ से छुड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी यू नो लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने।
1: ओह,
0: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये यू नो ये अमीर लोगों के लिए यू नो शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब यू नो आइदर टीचर है या यू नो फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है। मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने ना कर दी। मैंने बोला कि नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे, तू गिरेगा, तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे। ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल थे,
1: हर तरह से तोड़ने की कोशिश थी
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है।
0: करेक्ट।
1: वो हर चीज से डरता है।
0: हाँ।
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने के लिए,
0: हाँ,
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा होगा।
0: हाँ, अगर आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लोग सपोर्ट मिलता है। हाँ। लेकिन हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं। उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए वो
1: ये बहुत बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे, आगे बढ़े। हर बाप की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश हो
1: तो खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई। तो मेरे डैडी को समझ में आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूँ। और
1: फाइनली फिर आपके मदर फादर खुश हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए। बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने यू नो एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे पूरा, मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया। और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पर जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पर आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है।
1: लेकिन और बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं होता।
0: नहीं होता। तो वो अकल बाद में फिर जब जमीन पर उतरा, मैं उड़ रहा था कि मेरा ऐसा होगा। मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, देखेंगे कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। और यू नो तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और मैंने कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अरे टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, हाँ। रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते, हाँ, थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में,
1: जरूर।
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त, हाँ, पूछी जाए,
1: हाँ,
0: तो किस तरह के गाने होते थे?
1: मेरे
0: किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन
1: और मुझे, सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है,
0: हाँ,
1: तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे,
0: हाँ, हाँ,
1: तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: के कई बार
0: दरवाजे पे लटक जाऊं।
1: आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूँ कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूँ। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों, ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये मैं आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते
1: हैं। नहीं, सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हंसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था

0: ये गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, दिखते क्या है, तब तक तो मुझे कोई थे ही नहीं, मैं मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: करे लगा ले।
1: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा।
2: हाँ।
1: फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं।
2: हाँ।
1: आज भी हैं।
2: शुक्रिया।
1: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
2: देखिए, आज के तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई हद तक मैं यू नो सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
2: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
2: और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं, उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
1: हाँ।
2: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल जो मॉडलिंग जो मेन कैरेक्टर है वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस मैंने किए बड़े बड़े यू नो जाने माने डायरेक्टर के साथ, लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपने परिस्थिति आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं यू नो अच्छा बनाऊँ, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और यू नो ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और

0: अच्छा करके जाएगा और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है यू नो तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है, जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं थोड़े मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के यू नो माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊँगा। मुझे लगा कि यार जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के बगे तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है। मैंने
1: फिर आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया, और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं और फिर 18 या 19 साल में मैंने कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में यू नो सुनने में आया था कि हाँ ये कोरियोग्राफ करता है, यू नो स्कूल कॉलेज फंक्शन सब यू नो दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने, क्योंकि ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्म जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता जो आमिर की पहली बीवी थी वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की, तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है वो कोरियोग्राफ करके दिखाए,
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस करती है वो वाला डांस सेक्शन,
0: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको
0: हाँ। तो रीना मेरी यू नो वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी, वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए। मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना और उन्हें मुझे ये यू नो प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज में से। नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम आना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि

0: रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है आप बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है? मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे। वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है, सबसे सीनियर, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है। आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है। हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूँ कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूँ कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर, द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। सर आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पर रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3रे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़े कलाकार बड़ी फिल्म थी।
0: हाँ,
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये ये नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जिसका नाम है आपकी फरमाइश।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी राजकुमार गुप्ता और लेकर हाजिर हूं आपका अपना कार्यक्रम जिसमें शामिल होते हैं आपके फरमाइशी पत्र और हम पूरी करते हैं आपकी फरमाइशों को यहां से। तो अब देर किस बात की, आपके साथी के साथ उठाते हैं पत्रों की ढेरी में से ये पत्र और देखते हैं कि हमारे कार्यक्रम में कौन कौन भेज रहे हैं हमारे फरमाइशी पत्रों की श्रोता और उनके नाम क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम उठा रहे हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन श्रोताओं के पत्र शामिल होते हैं। और हाँ, पत्र तो हम सभी श्रोताओं की शामिल करते हैं। तो कार्यक्रम में ये पत्र हमें मिला है बोडूसरा नाइला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। आप आज के हमारे इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं छुपा रुस्तम फिल्म का ये गीत जिसे गा रहे हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और साथी। गीत रचना आनंद बख्शी की।

है और संगीत आनंद मिलिंद का है। फिल्म छुपा रुस्तम के इसी गीत को सुनने के लिए एक और पत्र हमें मिला है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से, और आप हैं हमारे नियमित श्रोता विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और परी मूणत। और साथ ही साथ ये एक और पत्र हम उठा रहे हैं जो हमें प्राप्त हुआ है ग्राम बड़भूंजी जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश से। रघुनाथ माली, भंवरबाई, सुषमा, ममता, मंजू, पुष्पा, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, विनोद, विशाल, मिलन और ओम प्रकाश। तो आप सभी साथियों की फरमाइश हम कर रहे हैं पूरा, और आपकी फरमाइश का फिल्म छुपा रुस्तम का गीत पहुँचा रहे हैं आप तक। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद।

अभी आपने सुना फिल्म छुपा रुस्तम का ये गीत, और इसी गीत को सुनना चाहा था पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। साथ ही साथ फिल्म छुपा रुस्तम के इसी गीत को सुनना चाहा था मलोट के पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, विशाल मिगलानी, सुप्रिया अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी और इनके पूरे परिवार। तो कार्यक्रम में हम और भी पत्रों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज आपको सुनवाते हैं प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ब्रॉडकास्ट श्रृंखला का ये अंक, जिसे हम रिले कर रहे हैं दिल्ली से, और उसके बाद फिर से आपको आपकी फरमाइश कार्यक्रम में हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओ नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री राम जी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
2: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
3: मैं तो सरपंच हूँ, लेकिन मेरे ग्रामवासी और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे। और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़

0: को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जसपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं और इस मुकाम पे पहुंचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आने वाला समय में जो हम लोग का बचा खुचा है, आने वाला फर्स्ट प्राइज का अवार्ड हमको मिले, उस आधार से हम जो बचा खुचा काम है या हम लोग नहीं पहुंच पाए उसके लिए भी हम लोग काम करना चाहते हैं।
1: सरपंच जी, जब आपने इस काम को करना शुरू किया तो वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ थीं और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक के स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
0: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जनप्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में चार बार और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी लेकिन हमारे सपोर्ट में जनप्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
1: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
0: मेरा सहयोग दिए।
1: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौतियां आपके सामने थी?
0: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से और हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
1: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
0: जल संरक्षण के लिए केड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
1: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
0: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है इसकी हम लोग पानी की बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सोखता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं नहाते धोते हैं उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
1: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
0: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि तो वाटर पानी को इकट्ठा करना और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैंडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है बरसात का पानी।
1: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
0: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
1: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो

0: आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय। हम लोग पहले भी जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था। उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था, उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए। उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए और जनपद से भी कुछ पैसा और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग को वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए। अगर बंजर भूमि मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे।
0: मतलब उसके लिए भी आपने
1: कार्य तैयार कर रहे हैं।
0: और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
1: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या कि उसको हम लोग बनाते नहीं है
0: जी।
1: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं। लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए। वहाँ हम लोग का मतलब कि गाँव में कुछ प्लास्टिक मुक्त है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
0: इस तरह की जो गतिविधियां खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
1: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को। उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
0: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
1: और सत्ते में जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
0: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
1: सर केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
0: जी,
1: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
0: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
1: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहा।
0: यही प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
1: सर उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
0: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
1: सर हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं
0: जी।
1: और सारा समस्या का हल मैं इस मिनट उठता हूँ बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, इसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इस मिनट उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से चाहे जिला स्तर उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
0: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
1: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है जो लगता है सचिवालय, उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन
0: अच्छा।
1: है मेरा सोमवार मंगल बुध भी फिर मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घर में बैठता हूँ और तीनों दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब तीनों दिन मेरा काम हो जाता है,
0: यानी लगातार व्यस्त रहते हैं।
1: मतलब कि हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है,
0: यही कारण है कि आपके पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है
1: जी सर।
0: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांवों में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
1: सर उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है वो

0: वो कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था। फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए, जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ODF मतलब पंचायत जिला जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए। आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है। हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं। चाहे जिससे कहा महिला KYC वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हरेक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भरत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी बेसी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि

0: मेरा कहीं कमी भी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहाँ तक पहुँचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ पॉडकास्ट श्रृंखला का पांचवा अंक, जिसे हमने रिली किया था दिल्ली केंद्र से। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का झालावाड़ केंद्र FM 103.2 MHz पर, और कार्यक्रम आपकी फरमाइश फिर से आपकी सेवा में हाजिर है, और आपके पत्रों को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त राजकुमार गुप्ता। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये पत्र हम उठा रहे हैं। जो पत्र हमें मिला है आदर्श नगर मलोट से, आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। आप हमारे आज के इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का ये गीत जिसे गा रही हैं लता मंगेशकर। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत शिव हरी का है। फिल्म चांदनी के इसी गीत को सुनना चाहे गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। साथ ही साथ ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनोमिका, उत्कर्ष नेताम। और ये एक और पत्र हमें मिला है, आप हैं रामगोपाल गुप्ता, हुकम सिंह, साथ ही कैलाश सिंह पंवार और इनके साथ बाबूलाल, विनोद गुप्ता, ईश्वर पाटीदार, सुनील और राहुल। आप ये पत्र हमें लिख रहे हैं शीतला माता चौक माताजी की मिश्रोली तहसील पचपाड़ जिला झालावाड़ से। तो आप सभी सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म चांदनी का ये गीत।

आकाशवाणी की झालावाड़ केंद्र से आप सुन रहे हैं आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में अगला पत्र हमें मिला है और ये है लाल माता सुदामानगर रटलाई जिला झालावाड़ से। आप हैं हमारे नियमित श्रोता हर्षिता रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी। आप सुनना चाहते हैं आ अब लोचन फिल्म का ये गीत जिसे गा रहे हैं कुमार सानू, सोनू निगम और साथी। गीत रचना समीर की है और नदीम श्रवण का संगीत है। फिल्म आ अब लौट चलें के इसी गीत को सुनने के लिए एक और पत्र हमें मिला है ग्राम रटलाई से भगवती बाई सेन, पूजा, किरण, कृष्णा, सावित्री सेन, मुकुट बिहारी, देवकी नंदन, भैरू, दिलीप, सुजान, मोहन सेन, सोहन, घनश्याम, मांगीलाल, बद्रीलाल देवासी और इनके सभी

साथी। साथ ग्राम गिरधरपुरा हेमरा पाटन से पप्पू परिहार, बलराम परिहार, भगवान सिंह, करण अर्जुन, गुलशन सृष्टि, कालीबाई, सोरम और संतोष दांगी आप भी सुनना चाहते हैं अब लोड चले फिल्म का यही गीत। तो आप सभी की फरमाइश हम कर रहे हैं, पूरा गीत पहुंचा रहे हैं आप तक।

अगली फरमाइश के रूप में आप सभी श्रोताओं ने ये पत्र हमें भेजा है, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सुनना चाहते हैं आदमी खिलौना है फिल्म का ये गीत, जिसे गा रहे हैं अलका याग्निक और साथी। गीत रचना समीर की और संगीत नदीम श्रवण का है। और फिल्म आदमी खिलौना है कि इसी गीत को सुनना चाहे छबड़ा जिला बारा झाला राजस्थान से आप हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। और साथ ही साथ एक और पत्र हमें मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। आप सभी सुनना चाहते हैं आदमी खिलौना है फिल्म का ये गीत। गीत हम पहुँचा रहे हैं आप तक।

0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में ये पत्र हमें मिला है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये पत्र आप हमें लिख रहे हैं। आखिरी रास्ता फिल्म का ये गीत आप सुनना चाह रहे हैं जिसे गा रही हैं एस जानकी और मोहम्मद अजीज। साथ ही फिल्म आखिरी रास्ता की इसी गीत को सुनना चाह है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर मध्य प्रदेश से MM राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, शशि, रिया, रीत, स्वीटी, सागर, रितिका, रिचा, चित्रंजन, उमेश, कमल, सरोज, रेखा, आरती, ऋषभ राजावत और इनका पूरा राजावत परिवार। साथ ही साथ महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद, आप सभी सुनना चाहते हैं आखिरी रास्ता का ये गीत जिसे गा रही हैं एस जानकी और मोहम्मद अजीज। साथ ही साथ बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, आप मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमीरागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से ये पत्र हम तक भेज रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक और पत्र हमें मिला है राज मधु राजावत, राशि रक्षित, शशि, रिया, रीत, स्वीटी, सागर, रितिका, ऋचा, चित्रंजन, उमेश, कमल, सरोज, रेखा, आरती, ऋषभ राजावत और इनका पूरा राजावत परिवार। साथ ही साथ महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद, आप सभी सुनना चाहते हैं आखिरी रास्ता का ये गीत जिसे गा रही हैं एस जानकी और मोहम्मद अजीज। साथ ही साथ बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, आप मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमीरागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से ये पत्र हम तक भेज रहे हैं। और साथ ही साथ ये एक और पत्र हमें मिला है गांव गुराड़िया भरता तहसील पचपार जिला झालावाड़ से, आप हैं राजूलाल मेहर, हरिराम मेहर, दिनेश, ललित, दिव्या मेहर और हिमाक्षी मेहर, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आखिरी रास्ता का गीत। आप सभी के पत्र लिखने के लिए धन्यवाद, हम कर रहे हैं आपकी फरमाइश को पूरा और ये गीत पहुंचा रहे हैं आप तक।
1: ओके, आई विल टेल यू स्टोरी बट एवरीबडी विल सिंग विथ मी।
2: ओके,
1: रेडी, कम ऑन, 1 2 1 2 3 4
2: Jump!

तो ये भागादौड़ी तो चलती रहेगी, लेकिन कार्यक्रम अब समाप्त होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताना है कार्यक्रम में पत्र भेजने के लिए पता, तो उठा लीजिए पेन और कागज और तैयार हो जाइए पता लिखने के लिए। तो लिखिए, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झालावाड़ और पिन कोड संख्या है 326001। तो अब इन बातों और गीतों के साथ आपके पत्रों के ढेर को समेटते हैं और दीजिए आपका रेडियो दोस्त राजकुमार गुप्ता को आज्ञा कार्यक्रम समाप्त करने की।

शाम 7 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम और शाम 7:10 से आप सुनेंगे युवा शक्ति, एक विशेष कार्यक्रम जिसमें मनसुख एल मांडविया युवा मामले और खेल मंत्रालय आपसे संबोधित होंगे। साथ ही शाम 7:45 पर आप सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जिसमें चर्चा होगी बीज उपचार एवं इसके लाभ, जल संरक्षण और फसल चक्र, खेत बचाओ अभियान। भेंटवार्ता में सुनेंगे प्रगतिशील किसान रामस्वरूप ग्राम सुमर से अमरलाल सुमन की बातचीत। रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और समाचार संध्या का समय निर्धारित है 8:45, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे से होगा कार्यक्रम सबरस।

आइए अब जानते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का प्रसारण समय और रूपरेखा। कल प्रातः 7 बजे सुनने का कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ सुविचार होगा। अन्न की बर्बादी प्रकृति और जीवन के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। चर्चा सुनिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, महिला सशक्तिकरण और आवास। रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और समाचार संध्या का समय निर्धारित है 8:45, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे से होगा कार्यक्रम सबरस।

आइए जानते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का प्रसारण समय और रूपरेखा। कल प्रातः 7 बजे सुनने का कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़ सुविचार होगा। अन्य की बर्बादी प्रकृति और जीवन के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। चर्चा सुनिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, महिला सशक्तिकरण और आवास, साथ ही साथ अन्य जानकारियां कार्यक्रम में शामिल होंगी।

0: कल प्रातः 8:30 पर सुनिए फुलवारी कार्यक्रम आओ जाने साफ खाना अच्छी सेहत विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस महिला सशक्तिकरण और आवास साथ ही बच्चों के मुख से मेरा हेल्दी टिफिन और स्वच्छता कितनी जरूरी दीपक माहिर देवा अरमान से मेघना विष्णु की बातचीत सीख जंक फूड से दूरी सेहत से दोस्ती कल शाम 5 सुनिए कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सजीव फोन इन कार्यक्रम रहेगा और कल शाम 7:45 पर सुनिए कृषक चौपाल कार्यक्रम चर्चा होगी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस महिला सशक्तिकरण और आवास साथ ही रसायनों पर निर्भरता कम करने के प्रमुख उपाय भेंटवार्ता में सुनिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर खाद्यान्न भंडारण में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका साथ ही साथ जानकारी की बातें होंगी विकसित भारत जी रामजी योजना के बारे में तो ये थी कार्यक्रम रूपरेखा और उनका प्रसारण समय हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं आइए सुनते हैं समाचार दिल्ली केंद्र से
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया रक्षा मंत्री राजनाथ

0: सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से FM 103.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं तलाश फिल्म में उदित नारायण, अलका याग्निक का गाया 2 गाना, गीत रचना समीर की, संगीत संजीव दर्शन का है।

Akashwani at 90. तड़ी पार फिल्म में सुनिए कुमार सानू अलका याग्निक का गाया दूगा। श्रवण का संगीत है, गीत रचना समीर की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

स्वर्ग से सुंदर फिल्म में सुनिए किशोर कुमार आशा भोसले का दुगन। शब्द रचना आनंद बख्शी की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ध्वनि संयोजन।

सूर्या फिल्म में सुनिए अलका याग्निक को। संतोष आनंद की गीत रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

सूर्य फिल्म में सुनिए अलका याग्निक को। संतोष आनंद की गीत रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: सूर्या फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और उसके बाद सुनेंगे आप राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और व्यापार सुगमता के लिए भी कई सुधार

0: पर मंथन किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के देश दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा धनवंतरी ओपीडी यूनिट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वार्डों के रोगियों से भी बातचीत कर इंतजामों की जानकारी ली। श्री शर्मा ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी और अधिकारियों को मरीजों के लिए जांच सुविधाएं और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस देश का प्रतिष्ठित अस्पताल है। यहां प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जहां भी सुधार की गुंजाइश है इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
1: या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो। आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारी जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो भी होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करें।
0: मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। श्री शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में सुशासन से देश की तस्वीर बदली है।
2: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज अपने पहले दौरे पर जयपुर पहुंचे। संगठन महामंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन के कामों और गतिविधियों की जानकारी ली। वे कल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्ताओं की विशेष बैठक लेंगे। उनका ये प्रवास संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की आज समीक्षा की। उन्होंने विभागों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आज जयपुर में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा तथा नर्सिंग की भर्तियों की विभागवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आज प्रदेश के 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों और नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों के साफ सफाई के कामों को अधिक प्रभावी और जन भागीदारी आधारित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में इन शहरों में स्वच्छता प्रबंधन, कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और जन जागरूकता के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने स्वच्छता व्यवस्था में ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम के नवाचार की सराहना करते हुए

0: साफ सफाई में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए युवा ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश के युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: बहरोड में आज अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत समर कैंप का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि समर कैंप से युवाओं की प्रतिभा को पहचानने का भी अवसर मिलता है।
2: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत कल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा। बाड़मेर में पुलिस की ओर से साइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं पाली में साइकिल रैली के जरिए लोगों को नियमित व्यायाम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेजड़ी वाटिकाएं विकसित की गई हैं। राज्य वृक्ष और थार कल्प वृक्ष मानी जाने वाली खेजड़ी के संरक्षण के प्रयास के तहत ये पहल की गई है। वन विभाग ने एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी का चयन कर करीब 1.5 करोड़ खेजड़ी पौध तैयार की है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जल्द ही इनका वितरण भी शुरू किया जाएगा।
3: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे कई शहरों का दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को बदले मौसम से काफी राहत मिली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बरसात के आसार हैं। राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां आज और कल कई हिस्सों में जारी रह सकती हैं। वहीं 8 जून से एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने और हीट वेव चलने की चेतावनी बताई गई है। भारतीय

क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में भारतीय टीम की चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। जापान में होने वाले एशियाई खेलों और भारत के श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम का चयन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक

0: देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में भारतीय टीम की चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। जापान में होने वाले एशियाई खेलों और भारत के श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम का चयन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्यामलाल ने तैयार

आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस जवानों, विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। इस अभियान की शुरुआत नागौर के जड़ा तालाब के पूजन के साथ हुई।

0: इस दौरान पौधे लगाए गए और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान 12 दिन तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा गया। इस दौरान जगह जगह साफ सफाई की गई और जल संरचनाओं की मरम्मत के कार्य हुए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अभियान के तहत नागौर के प्रताप सागर तालाब की पाल पर जल पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। श्री चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता, बिजली, पानी और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण का काम कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 15 मई तक स्वयं गणना का काम किया गया। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को कार्मिकों के साथ स्वयं गणना सुनिश्चित करने और हर कर्मचारी को कम से कम 10 अन्य परिवारों को प्रेरित करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया गया ग्राम रथ अभियान ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का प्रभावी माध्यम बना। अभियान के दौरान अधिकारियों ने योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। जिले में 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके लगवाए गए। इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत जिला अस्पताल सहित विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव और टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। नागौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। खेल मंत्री मनसुख मांडविया, नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो साचो करण वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली रही हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारी आर्थिक सलाहकार परिषद सागे मीटिंग कीनी। वह दुनिया में चाल रही उथल पुथल विचे भारत री माली बरकत ने बधावो देवन सारू करिया जावन वाला न्यारा न्यारा जतन रे बारा में चर्चा कीनी। मीटिंग में जनता री जिंदगी ने और बेहतर बनावन और कारोबार करण में आसानी लावन सारू विचार करी चियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल री धनवंतरी ओपीडी यूनिट रो दौरो कीनो। वह मरीजों अस्पताल री व्यवस्थावां रे बारा में जानकारी लीनी। श्री शर्मा मरीजों सारू भांत भांत री जांचा रा सुबिता, जरूरी दवाइयां री उपलब्धता और गर्मी में छाया पानी री व्यवस्था तय करन रा हुक्म दीना। मुख्यमंत्री हड्डी रोग कार्डियोलॉजी वार्ड और न्यूरोलॉजी वार्ड री व्यवस्थावां रे बारा में मरीजों जानकारी लीनी। ई मौके वे कहो के अस्पताल में चोखो काम भी है पर फिर ही सुधार री गुंजाइश है।
2: या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो, आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, सभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है। कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है, जो भी होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें इस पर हम चर्चा करें।
1: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि लाडला 12 साल

0: अलमाए देश माए सूरज री रोशनियों बिजली बनावन रो बूतो 2.8 गीगावाट उं बधर 155 गीगावाट फेंक्यो है। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि देश माए 40 लाख उं बत्ता घरां माए सूरज री रोशनियों बनी बिजली काम ली जा रही है। शेखावत कहो कि खेतीबाड़ी माए सूरज री रोशनियों बनी बिजली दूनी तादाद माए काम लेवणो आबो हवा ने बचावन सागे बरकत री मिसाल है। केंद्रीय मंत्री कहो कि देश रा किसान अब जिनसा री उपज लेवन सागे बिजली पैदा कर रहा है। श्री शेखावत आज जोधपुर पधारिया वठे खबरनवीसा सागे बातचीत करता थका वह कहो कि लाडला 12 साल माए सुशासन देश री तस्वीर बदली है।
1: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं आत्मनिर्भर हो सकते हैं इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा नुआ बनाईजा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज पहला दौरा सारू जयपुर पधारिया। वे भाजपा रा प्रदेश दफ्तर माए पार्टी रा ओहदादारा सागे मीटिंग कीनी। वारो काल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्तावां सागे खास मीटिंग करन रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश रा न्यारा न्यारा महकमा माए भर्तियां रा काम रो आज जायजो लीनो। वे गृह प्रशासनिक सुधार पंचायती राज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शिक्षा और चिकित्सा और नर्सिंग री भर्तियां रो विभागवार जायजो लीनो। मुख्य सचिव महकमा ने भर्ती रा काम जुड़ी जरूरी कार्रवाई बेगी पूरी करन रा हुकम दीना। श्री श्रीनिवास भर्ती रा काम माथे लगातार निगरानी राखण बाबत कहो। मुख्य सचिव हुकम दीना श्री श्रीनिवास भर्ती रा काम माथे लगातार निगरानी राखण बाबत कहो। मुख्य सचिव स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 रातेत जयपुर उदयपुर अलवर और नाथ द्वारा माए स्वच्छता सर्वेक्षण री तैयारियां और नवाचारा रा बारा माए जानकारी लीनी। मीटिंग माए आठ होड़ा साफ सफाई रो प्रबंधन कचरो भिड़ोकरण गंदी चीजा रा प्रसंस्करण और जन जागरूकता सारू कराया जा रहा कामा री जानकारी दी री जी। मुख्य सचिव साफ सफाई रा काम माए ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम रा नवाचार रे सराहना करता थका साफ सफाई माए तकनीक रो बत्तों बत्तो इस्तेमाल करन बाबत कहो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंक सत्यापन और परीक्षा री कॉपी उजू जंचावन सारू अर्जी देवन री आखिरी तारीख आज 6 जून नु बधार 7 जून करतीनी है। ई पाछे विद्यार्थी अब काल आधी रात ताई अर्जी दाखिल कर सके है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय युवा का

0: नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: अलवर सांसद खेल उत्सव रा तहत बहरोड़ माए आज समर कैंप शुरू हो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और अलवर रा सांसद भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सागर इनरी सरवात कीनी। ए मौके दिया कुमारी कहो के खेलाओ अनुशासन, टीम भावना और अगुवाई करण रा बूता रो विकास वह है। उप मुख्यमंत्री कहो के समर कैंप मोटियारा री प्रतिभा री पहचान रो मौको ही मिले है।
2: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
1: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान रातेत काल स्वास्थ्य रो ध्यान रखन रे बारा माए जाग जगावन सारू खास कार्यक्रम रख्या जावेला। बाड़मेर माए पुलिस री ओर साइकिल रैली निकाली जावेला। पाली माए साइकिल रैली रे जरिए रोजिना कसरत करण जुड़ी जाग जगाई जावेला। राज्य वृक्ष अर थार कल्प वृक्ष कहो जावन वालो खेजड़ी रा रूखड़ा ने बचावन री कोशिशा रा तहत चूरू जिला री न्यारी न्यारी ग्राम पंचायतां माए खेजड़ी वाटिका विकसित करी ची है। वन विभाग एक जिला एक वनस्पति रातेत खेजड़ी रा करीब 1.5 करोड़ पौधा तैयार कीना है। माना खबर नवीस बतायो के ए पौधा बांटन रो काम बेगोई शुरू करियो जावेला।
3: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
1: अरब मौसम, राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल बीच घनखर ठोड़ा पारो 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। कई शहरा माए दिन रा बगत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो है। हालांकि राज्य रा आतुणी हल्का माए कठे कठे जोरदार तावड़ो पड़ रियो है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर माए पारो 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। मौसम विभाग रे मुजब आज प्रदेश रा 25 जिला माए आंधी बारिश रा आसार है। आंधी बारिश आज और कल कई हल्का माए चालती रहवन री संभावना है। महकमो 8 जून उजू गर्मी रो असर बधवा सागे लू बाजन सारू चेतायो है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इंग्लैंड और आयरलैंड सागे T20 मुकाबला सारू भारत री टीम रो ऐलान कर दिनो है। श्रेयस अय्यर ने टीम रा कप्तान और तिलक वर्मा ने उप कप्तान बनाई चिया है। 15 साल रा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने पहली दफा भारत री टीम माए शामिल करी चियो है। वैभव इस साल री IPL होड़ माए सबों 72 रन बनाया है। नौजवान खिलाड़ी प्रिंस यादव नई टीम माए शामिल करी चिया है। जापान माए फेवन वाला एशियाई खेलना और भारत रा श्रीलंका दौरा सारोई टीम चुनी ची। भारत और अफगानिस्तान री क्रिकेट टीम बीच ई सीरीज रा आज शुरू हुआ। एकला टेस्ट मैच माए भारत पहली पारी माए 368 रन बना लेना है और वारा 3 बल्लेबाज आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनार खेल रहा है। ऋषभ पंत 50 रन बनार वारो साथ दे रहा है। इनु पहली KL राहुल 100, साई सुदर्शन 81 और यशस्वी जायसवाल 24 रन बनार आउट हुआ। राजस्थान माए श्री गंगानगर रा मानव सुथार ई पहली दफा भारत री टीम माए शामिल करण सा गए ई मैच माए खेल रहा है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माए सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रे बारा माए चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा SMS अस्पताल रो औचक दौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनों सांचो करण वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जयपुर।
1: हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगा हर्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको लिए चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जानी मानी साहित्यकार और समाज सेविका सुधा मूर्ति ने। तो आइए सुने सुधा मूर्ति द्वारा प्रस्तुत ये विशेष जयमाला कार्यक्रम।
1: मैं सुधा मूर्ति बोल रही हूँ मुंबई से। मैं बचपन में जयमाला माने हमारे मुल्क के सैनिकों का एक गीत माला था, ऐसे ही मैं पली हूँ। और मुझे बहुत याद है जयमाला के वक्त में हम बाहर खेलते थे, उस समय मैं आती थी सुनने के लिए, इसीलिए जयमाला ये मेरे बचपन का एक हिस्सा हुआ है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं हिंदी में बात करने के लिए कोशिश करती हूँ, कभी मैं वर्ड्स नहीं मिलता उस समय मैं अंग्रेजी में बोलती हूँ। भाई वो मुझे गर्व है आप हमारे देश के बॉर्डर सब प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज यू पीपल प्रोटेक्ट अस, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। आपका हार्ड वर्क इसका नतीजा हम देख रहे हैं, आप कितने हमारे देश के लिए त्याग बलिदान करते हैं और घर से

बहुत सुंदर है। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, वो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी शायद पसंद होगा। इसका बैकग्राउंड भी सुंदर है और इसका म्यूजिक भी जरा अलग तरीका से है, इसीलिए मैं पहले गाना आपके लिए दो लफ्जों की ये डेडिकेट करती हूँ।

पहले दूसरा गाना है छूकर मेरे मन को किया तूने इशारा, इसका साहित्य भी अच्छा है, इसका वो संदर्भ भी अच्छा है, मेरा गला अच्छा नहीं, नहीं तो मैं वो ट्यून करके बोलती थी, लेकिन मुझे बोल का अच्छा मालूम होता है लेकिन ट्यून नहीं आती है। ये भी सुंदर गाना है, आप बहुत एंजॉय करेंगे।

0: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक। इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government, and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. हम आपसे जो आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में, उसके ऊपर हम आपसे डिस्कशन करना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए। सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
2: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता, मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ। और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी

0: बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके, और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया। और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी,
0: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61% लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे
1: जी।
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं। और उन कारोबारों से आगे चलना मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लड़की से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही हैं उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे। लगभग वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स, तो वो काम भी हो है।
1: जी, जी।
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं, तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, तो ये सशक्तिकरण मात्र नहीं है
1: जी,
0: जी ये आजीविका के मामले हैं।
1: यस आदित्य जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इन फैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशियरीज, एंड इंडिया इज लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women

0: the Government of India. So there is focused intention to help women reach where they belong. And the larger point that we have to make is that women are now no longer seen as passive beneficiaries of government schemes. They are seen as empowered agents of change, you know, central to the growth story of the country. And if you look at the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, you will realize that the government has put in its policy intent.
1: On the ground bhi usko implement kiya ja raha hai, jis tarah ki scaling ho rahi hai, ye aapko lagta hai bahut important hai?
2: बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी ये वही है. और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट, और वॉज बिकॉज ऑफ दैट. और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा. आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज ए ह्यूज जंप. और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they are outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए. और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी.
1: बिल्कुल,
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहाँ से आरंभ किया जा रहा है. प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ. फिर मातृवंदना योजना, जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ड. और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर.
1: For the universal immunization program, also a lot of efforts have been made, as you are referring, you know, till March 2026.
2: Yes.
1: More than 11.87 crore children and 3.96 crore pregnant women were registered, and 8.73 crore women were screened for cervical cancer. Ek
2: yes.
1: aur jo aapne baat kari matritva support di ja rahi hai. Ji. So maternal mortality rates bahut niche aaye hain, infant mortality rates niche aaye hain, aur institutional deliveries 68% से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है. जी 98 बिल्कुल 98%. तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
2: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है.
1: जी
2: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं.
1: जी जी.
2: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी. फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%. सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से. सो ODF फ्री इंडिया. देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
1: Yes.
2: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together,
1: yes.
2: which will surely lead to healthier generations in coming times.
1: And also when
2: yes.
1: women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know,
2: yeah,
1: due to the
2: yeah.
1: Jal Jeevan mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
2: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future.
1: Yeah.
2: You can see the women have dreams about their children now.
1: Mm.
2: And

0: especially the daughters, I have come across as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up. Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र की जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन विमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
1: एब्सोल्युटली. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव्स वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है आरजी कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का. जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है. समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है. और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स. जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा. इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है. अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो. पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में समाज का रोल आ जाता है.
1: बिल्कुल, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है. और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन हैं इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए है. लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफकोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आए और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं, ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो. सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी.
2: बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयर

अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं

0: ओनर्स टू प्रूव अदरवाइज, वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है ना कि महिला पर है जो पीड़ित है. सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है.
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई है, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड है और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेज को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले. सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी.
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है which is easier for women especially if you don't have to go anywhere and you can still access most of the facilities nothing better than that that is almost best because apne aap mein movement ya aavagaman jisko kehte hain wo mahilaon ka samay bhi leta hai shakti bhi leta hai aur kai baar kuch seemaein bhi dalta hai isliye digital empowerment digital training aur digital capacity building ye target raha hai sarkar ka इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे. देयर कांट बी बेटर रेसिपी बिकॉज इफ यू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट विच वीमेन नीड यूजुअली एंड मे बी आफ्टर सम टाइम दे डोंट इवन नीड, दे मे हैव देयर ओन ग्रुप्स, दे मे हैव देयर ओन फाइनेंसर्स ऑल्सो लाइक दे आर कमिंग अप नाउ, बट विद दैट यू ऑल्सो नीड लेटेस्ट स्किल्स बिकॉज स्किल्स कीप चेंजिंग and the market needs different kinds of skills at times they may be digital skills in coming time and you see women are really very good at that because this is heart and hand both going together and then if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also I would say or fields then they are ready for the world aur ye sarkar chahti hai women led development kab hoga wo ek madhyam to yahi hai pehla swasthya uske baad suraksha उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है जहाँ नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है. 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50% और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी. और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे.
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65% से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर

0: women administrators, especially in our young ones, they have this in their mind. तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: आदित्य जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं तो जब अब ये एक आकार लेगा, जब भी जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: सो एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स द गोल ऑफ विकसित भारत बाय 2047, द रोल ऑफ वुमेन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग सेंट्रल टू दिस जर्नी। अक्रॉस सेक्टर्स वुमेन आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स। सुषमा जी, अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग डिस्कशन।
0: Thank you.
3: In this special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal. महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक, इसमें भाग ले रही थी प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अभी आप सुन रहे थे 21 एपिसोड की विशेष द्विभाषीय कार्यक्रम श्रृंखला युवा शक्ति, जिसे हमने रिले किया था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: अन्नदाता
1: को उन्मूलन आपने बीज का माध्यम से ही कर दियो
2: कर दियो
1: अना अब बीज जो चे बीज को निश्चित मात्रा में आपने कताई दवाई लेनी चे और वो कताई जो आपने कृषि विभाग का द्वारा की जाओ चे कई FIR यानी कि सबसे पहले फफूंदी नाशक से फिर इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक से फिर जो कल्चर चे वह कल्चर से उपयोग करना चे ताकि आपने जो फसल चे वह फसल निरोगी रहे और उनसे उत्पादन आपने कहता है अच्छो मिले और बाजार में भाव भी अच्छा मिला
2: अच्छा मिल सकता सही बात की आपके बीजोपचार को मतलब ही हो उच्च के बीज की बुवाई से पहले हूँ कताएं रोगा कीटार फफूंद से बचावा के लेके विशेष तरीका से तैयार करवो छे जो कि रासायनिक दवाइयां से जैविक पदार्थ से या घरेलू देसी तरीका से भी क्यों जाओ छे और आपने जैसे बताई दियो के इस तरह से जो बीजोपचार क्यों जाओ छे जिसे बीज मजबूत बने छे अंकुरण अच्छो हो छे और पौधा जो छे शुरू से ही स्वस्थ रहे छे जैसे आपने बात करी कि बच्चा बच्ची को अपन कई भी हरी बीमारी के पहले ही उनको टीकाकरण करा तो उसे आगे की जो समस्या छे उसे बच सका छे ठीक वैसे ही आपने फसला के ताई रोगा से बचाव के लेके अच्छी फसल आपने आवे इनके लेके यो जरूरी छे बीजोपचार
1: खरीफ की जो शुरुआत छे वह अपना महीना डेढ़ महीना को अंतराल के बाद में अपना किसान भाई अब जो चे खरीफ की शुरुआत करबो जरिए छे तो खरीफ की शुरुआत से ही आपने जो चे अपना किसान भाई जो फसल चक्र छे और जल संरक्षण छे इनके ऊपर भी अपना किसान भाई के ताई ध्यान देनी चाहिए जी के एक बूंद बूंद बचाऊंगा है ना तो आबाड़ो जो समय छे वो जल संकट से अपन न जूझेगा
2: सही बात की
1: अब जल संरक्षण के लिए का अपन कहता है अपना किसान भाई कहता है एक तो खेता की गहरी हकाई जुताई कर देनी चाहिए
2: जी
1: मेड़बंदी करनी चाहिए ताकि खेत को पानी खेत में रहे और जमीन में उनको भूमिगत रिचार्ज बढ़े और एक साथ ही जो चे जितना भी अपना खेत चे वहाँ खेता में जो फसल बो अपन तो इस बात को ध्यान रखना कि पिछली बार ई खेत में काई फसल बोई जी तो वह फसल उमा अपन न बोवा अगर वह फसल अपन उमा न बोवा तो उमा जो फसल से संबंधित जो भी कीट रोग बीमारियां ची वह कीट रोग बीमारियां से अपन अपनी फसल का ताई बचा लेगा और वो फसल से जो जुड़िया पोषक तत्व चा जिससे पिछले साल आपने सोयाबीन बाई थी तो सोयाबीन से जुड़िया जो पोषक तत्व चा वह पोषक तत्व की कमी आपना खेत में होगी
2: होगी
1: तो अगर आपने दूसरी फसल बोई चे जिससे मक्का बादी मूंगफली बोदी तो वो फसल से जुड़े हुए पोषक तत्व अपना खेत में भरपूर चे तो वह जो भी फसल बोऊंगा आपन वह फसल भी बढ़िया पैदावार देगी बढ़िया उपज आपन कताई मिलेगी
2: बहुत बढ़िया बात आपने बताई और अब जैसे कि अपन बीजोपचार की बात कर ही रहे जा तो देसी और प्राकृतिक तरीका के भी अपन अपना साथिया कताई बता दा जो सबसे छोका हो चे जैसे गौमूत्र चे नीम की खड़ी चे राख या छाछ चे तो इनसे भी बीजोपचार करो जावे चे यो तरीको सस्तो सुरक्षित और पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से छोको रहे चे अच्छो रहे चे इसे फसल में कई फायदो मले चे देखो अपन जद इन तरीका से बीजोपचार करके बुआई करांगा तो उसे अंकुरण अच्छो होगा देखो बीज को बीज जल्दी होगा और समान रूप से पौधा होगा आपने बतायो चे जैसे कि रोगा से सुरक्षा सबसे बड़ी बात इमें देखो अब जब देसी तरीका अपन काम में लेवा चा तो उसे उमे लागत भी कम लागे छे क्योंकि अपन कताई खरीद के लानो पड़ो कताई और उत्पादन ज्यादा हो छे पौधा मजबूत हो छे सबसे बड़ी बात दवाइयां को जो प्रयोग छे वो कम से कम अपन कताई करनो पड़े छे
1: यानी कि देसी तरीका से अपन किसान भाई बीजोपचार आदि करेगा तो लागत कम होगी मुनाफो ज्यादा होगा प्रगतिशील किसान भाई से वही बातचीत भी अपन अपना

0: ध्यान भैया का ताई सुना दिया। तो आज अपना साथ में छे राम स्वरूप ग्राम सुमर से वही बातचीत अपना अपना किसान भैया का ताई सुना दिया
1: जी।
2: राम राम साहब।
3: राम राम राम।
2: काय नाम छे आपको?
3: राम स्वरूप।
2: अच्छा राम स्वरूप जी, जमीन में कतरिक छे आपका?
3: 6 बीघा छे साहब।
2: अच्छा 6 बीघा जमीन छे। और ये जमीन का लाओ और भी कहा काम करो छो का?
3: दो को धंधो करा रहा हूँ।
2: अच्छा देखो बहुत बढ़िया बात बताई छे आपने, खेती का साथ ही पशुपालन भी करा जा।
3: पशुपालन करा जा, दूध को धंधो करा जा, खेती भी करा जा।
2: जैसे आपका 6 बीघा जमीन छे और ये 6 बीघा जमीन में आप घर को खर्चो चाल जाओ छो? 6 बीघा जमीन से
3: घर को खर्चो तो थोड़ा बहुत दूध बेच लिया जा, कुछ कुछ मंथ भी करा जा, खेती भी करा जा, तीनों काम करा जा, जिमा थोड़ा थोड़ा 4 मिनट से बच जाओ मतलब।
2: अच्छा जिसे आपने की कि भाई देखो पशुपालन करो जो, तो कतरा पशु आपके पास?
3: हमारे पास मान लो को 3-4-5 जानवर से, 2-3 गौ जी बस हैं भी, एक गाय भी है, सरकारी डेयरी पर दूध भी देता।
2: दूध दे दे जो आप पशुपालन से, पशुपालन कब से कर रहे हो?
3: अभी ना करीब करीब हो गया होगा, कम से कम 10-15-20 साल हो गया होगा।
2: अच्छा लगातार देखो पशुपालन कर रहे हो?
3: पशुपालन
2: है ना। अब पशुपालन से जो आई छे वह एक अतिरिक्त आय हो जाओ अपने पास में?
3: हाँ
2: भाई खेती की तो छे ही सही।
3: हाँ
2: लेकिन पशुपालन से की अतिरिक्त आय हो जाओ छे, तो जैसे आप 5-7 जो आपके पास में पशु छे, अबार यहाँ कतरा दूध दे छे?
3: यहाँ तो एक ही दे छे साहब, अबार समा भी हो जाओगा एक आध, अगला साल भी आओ छे, दो डब्बा से चाल भी जाओ जो मैं अपनों कर तो चाल तो रहा जो और का।
2: लंबा समय से पशुपालन कर रहा छे तो पशु की देख रेख छे, खिलाई पिलाई छे है ना, उनको रबा को छे, यहाँ की व्यवस्था कशा करो छो आप?
3: अब यहाँ की व्यवस्था तो ऐसा चारों भी भरा जा, और यहाँ को माना टापरी भी चादर भी छाया भी सारा ही काम कर लिया जाए उसे, तो
2: यानी कि सर्दी गर्मी बरसात से बचावा को उपाय सबसे पहले तो एक तो यानी कि पशु आवास जो वो बढ़िया होनी चाहिए, बढ़िया कर रखो आपने
3: वो तो बढ़िया ही कर मिले जाए।
2: अब दूसरी चीज आओ वहाँ की खिलाई पिलाई की।
3: हाँ खिलाई पिलाई,
2: खिलाई पिलाई की तो खिलाई पिलाई में मतलब काय ध्यान रखना चो जिससे पशु बढ़िया दूध दे, लगातार दूध दे, दूध घटक कोई ना?
3: भाई उमा का चौमासा में तो सूट बाओ जा, तो सूट भी पटका जा, और बस में कुट्टी भी सूट की कुट्टी कर लिया जा, कुट्टी भी पटका जा, बांट भी मल्ला जा शाम सुबह,
2: यानी कि बढ़िया खिलाई पिलाई और पानी समय पर पिला वो।
3: हाँ
2: अराई जो चे
3: भाई, अराई तो यूँ मान लो ना का पानी तो दिन में 3 बार पिए हो, सुबह पे शाम की पे, और शाम सुबह एक टाइम ना बांट भी मल्ला था,
2: एक टाइम ना बांट भी मल्ला था।
3: हाँ एक टाइम
2: तो जिसे आप बता रहे थे कि बांट भी मल्ला था, तो बांट जो चे आप यूँ भूसा में मिला दियो चो या दूसरे गड़ार दियो चो?
3: नहीं उनका ताई कड़क ताई तगारी में गड़ा जा, पहले पैरों में तेल भी डाला जा, और फिर नाला नाला जानवर भाई, दो जानवर दूध दे तो वही नाला नाला हिसाब से तगारी में शाम के टाइम ना मला जा, बाट मलर फिर दूध काटा जा। अब दूध काटिया का बार पाँच पैरों का ताई दूसरों चारों बस मला जा।
2: और जिसे आभार ये आपने बताया कि भाई दूध डेयरी पर दे दिया जा, तो जो दूध आपका पशु देते वो कतरा लीटर सवेरे शाम को दूध हो जाओ लगभग आपका?
3: एक पशु को 4 लीटर दूध हो जाओ एक टाइम ना,
2: एक टाइम ना,
3: एक टाइम ना।
2: तो इनको मतलब आपके पास में जो पशु चे वो देसी नस्ल का ही चे?
3: हाँ देसी नस्ल का,
2: देसी नस्ल का चे,
3: देसी भी चे और वहाँ में एक आध मारवाड़ी भी चे,
2: मारवाड़ी भी चे। तो यू गाय को जिसे आप बार दूध देता होगा तो गाय को दूध थोड़ा महंगो बका चेगा?
3: गाय का दूध में पेट कमाओ जा,
2: पेट कमाओ तो वो डेयरी पर ना देता होगा?
3: नहीं डेयरी पर दिया जाऊँ ना। गाय का दूध में कहे जे बढ़िया अपने खिलाई पिलाई तेल वेल रिशिया बढ़िया पटका ना, तो मैं 4-5 पेट आ जाऊँ।
2: तो और गाय को दूध देकर दूध से खुल्लो बेचे चे तो वो महंगो बका चे?
3: वो महंगो बका दे, बस वो महंगो बका वो, अरे बात डेयरी पर दे तो डेयरी पर भी जैसे बस का दूध के पेट दे 8.5 और गाय का दूध की दे 9 पेट, 9 रुपया पेट ऊषा पड़ गए।
2: अच्छा गाय का दूध की अलग अलग कीमत है। और जैसा फेट बढ़िया वो फेट से 17 रुपया फेट में आप कहते हैं दूध पड़ा मतलब
3: अभी यो मान लो का बार मुँह डरी पर दूसरे तो

0: चपेट भी आ जाओ, कोई ना साथ भी आ जाओ, पर चपेट सु
1: तो जिससे ये फेट बढ़ है ना,
0: ना।
1: और दूध को मूल्य बढ़ती कलेगा, काई करो तो आप।
0: इकले का तो फिर बांट वाट ज्यादा भी डालनी पड़े, फिर जानवर के ताई थोड़ा ज्यादा खिलानी पड़े, जिसको फिर पेट भी बढ़ जाए। बांट में तेल भी पटक दिया जा, और फिर न बढ़े तो फिर वो जानवर के ताई घी भी लाग जाओ, प्याज
1: अच्छा,
0: और
1: उनसे
0: कोई
1: पेट बढ़ जाओ
0: ये अच्छे समझे और कोई नहीं खाएंगे।
1: तो जैसे आपने बताया कि भाई फेट ऐसे बढ़ जाओ चे, और यह तरीका से फेट बढ़ा रहा अपन, मतलब दूध से जो चे वो थोड़ा सा उनका मूल्य ज्यादा ले सका चे।
0: हाँ ज्यादा हो सके, वो तो जतरो खिला होगा जानवर ही, उतरो देखो दूध भी चे और उतरो पेट भी उतरी बढ़े चे जानवर का कबा को ऊपर चाहो।
1: जानवर का कबो।
0: हाँ
1: और जैसे बाट जो चे, बाट भी जैसे चना की चूरी भी आओ चे है ना, बिनोला की खड़ भी आओ चे, अलसी की खड़ भी आओ चे, तो यहाँ सबसे बढ़िया खड़ कैसी की मानो चो आप?
0: कहाँ कटाई
1: कांकड़ा की। तो कांकड़ा की खड़ी कैसा मानो चो, मतलब
0: उमा कहीं चे उमा काकड़ो आओ चे तो उमा उ कड़ी का बस है, मतलब एक तो बस दूध भी बढ़े जे और उनकी वाह शरीर भी बढ़े वो और वहाँ पेट भी बढ़ेगी।
1: और जैसे आप बार देखो, ये तो आपने दूध की बातचीत हुई कि भाई दूध अच्छा बड़ा से, अब पशु अपना स्वस्थ रहे है ना, बीमार न हुआ, एक लेकर अब जैसे यहाँ बार टीकाकरण भी हो चे है ना, तो वो टीकाकरण भी करवाओ चुको आप,
0: टीका की सुइया लगे जो
1: टीका लगवा लियो जो टाइम पर। हाँ
0: टाइम पर टीका लागे जो चाचा महीना में लागे जो अब आ रही या बरसात आएगी 15 दिन बाद पाचे टीका लगा वो शायद
1: तो टीका लगावा को कई फायदे महसूस करियो आपने?
0: टीका लगावा को एक तो शायद जानवर का कुसाड़ ना हो और बेगा बेग जानवर बीमार ना पड़ा।
1: हाँ
0: टीका की सुई में यही प्रॉब्लम है, जानवर स्वस्थ रहोगे बढ़िया चारों भी खाओगे और कोई दिक्कत ना होगी।
1: यानी कि टीका लगा रहा अपन, कई टीका तो निशुल्क लागता होगा।
0: नहीं ये टीका लागे छे ना ज्ञापन बस करना लागे, ये जो पालतू जानवर रहो छे ना उनका टीको लागे।
1: तो जैसे आप ये टीका लगवाया अपन ना, तो टीका लगावा से काई मतलब उनको फायदा अपन कता है काई नजर आयो?
0: उनको फायदो तो यो ही छे का वो जानवर का मतलब यूं बेगा बेग रोग बराड़ ना हो।
1: जो रोग आउ चो वो रोगा से
0: हाँ वो रोग आ जाओ ना तो वो रोगों से दूर रह छे,
1: दूर रहो।
0: यही छे उमें और कोई
1: और
0: प्रॉब्लम।
1: दूसरी चीज जिसे आपने भाई की भाई टीकाकरण समय पर करवाई लियो चो, फिर एक अलावा जो वहाँ की देख रेख चे
0: अब
1: भाई
0: देख
1: जिसे।
0: रेख में तो देखो चाहिए एक मनक तो परमानेंट जानवर मच्छा हुए,
1: हाँ
0: देख रेख क्रिया बगैर तो जानवर अरबी को ना तो एक मनक तो परमानेंट चा हुए
1: हाँ
0: जो
1: अबार बारिश को समय आओगो, बारिश का समय भी अपना पशुओं का कताई जैसे वहाँ की देख रेख अपना कताई
0: करनी पड़ेगी
1: करनी पड़े, हर मौसम की अलग अलग देख रेख है
0: अलग अलग।
1: ना, तो जैसे अबार कादो कब चढ़ना माचे। हाँ
0: हाँ ऊँसो भी बचानी पड़ेगी भाई, उठा मालो तड़का अपना वहाँ बांध दिया चारों नीर दियो, फिर पानी पुआर दूरी जगह पर बांधा वहाँ चारों नीरियो, फिर शाम के टाइम ना दूरी जगह पर बांधा
1: और वहाँ का
0: तो
1: कान का गीलो रियो तो उनको ताई
0: उनको भी काम करनी पड़ेगी,
1: मुई भी सुको कर, ताकि
0: सुको
1: वो
0: करनी
1: पशु
0: पड़ेगी
1: जो है उनको ताई आराम रह।
0: आराम रह जैसा मतलब वो तो मन क्या को काम से पशु को काम से पशु की अड्डी जा गगा को न रहो पर बंदे रहोगे तो फिर शाम की तो दूध में पर को पड़ेगी
1: बड़ा कोई सही सही बात, यही बात है कि यानी कि आपने जो चे खेती का साथ में अगर पशुपालन भी सही तरीका से करा, तो
0: हाँ।
1: निश्चित रूप से आपने जो आमदनी चे।
0: या आमदनी पशुपालन की आमदनी इतनी छे मतलब पशु को दाएं आदमी ये रियो छे शेर रियो छे तो खेती 5 हजार पशु अगर ढंग से ये रह बूंके देखभाल करे ना तो एक पशु 4 लीटर दूध दे जाए तो दोनों टाइम को 8 लीटर हो जाए। अब 8 लीटर ना कम से कम 40-50 रुपये किलो मानो एक पशु, 100-150 रुपया वो का भी जाओ

अब आर अपन ने बहुत सारी बात बीज उपचार के बारे में अपना सात्या के ताई बताई और रामस्वरूप जी की जो चर्चा थी वह भी अपन ने सुन ली। अब देखो बीज उपचार से संबंधित जानकारी के बाद अब ड्रिप सिंचाई के बारे में भी अपन बात कर लें कार्यक्रम का माध्यम से के ड्रिप सिंचाई कहीं ऊंचे, क्योंकि देखो बीज उपचार तभी लाभ दे जबकि बीज के ताई सही मात्रा में समय पे पानी मिले। ड्रिप सिंचाई यदि अपन बात करा तो इसे कहें ऊंचे के पानी बूंद बूंद करके सीधो पौधा की जड़ा तक पहुंचे।

0: पे ध्यान जरूर देगा, क्योंकि यदि समझदारी से काम ला तो कम संसाधना में भी अपन ज्यादा फल ले सका छ, ज्यादा लाभ प्राप्त कर सका छ। देखो अमरलाल जी, अब आर अपन ने बीजोपचार के बारे में आर फसल चक्र के बारे में तो बात कर ली, पर जो अपनो अभी मिट्टी को बचाओ भी तो जरूरी छे ना।
1: आपने बहुत बढ़िया बात की छे कि यानी कि मिट्टी को संरक्षण करबो, मिट्टी का तय बचा रखान बो, मिट्टी की उर्वरक क्षमता का तय बचा बो, बनाए रखान बो, ये बहुत महत्वपूर्ण छे।
0: और अब आर तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान भी चल रहे जो खेत बचाओ अभियान।
1: हाँ, आपने सरकार भी इको पर काफी ध्यान दे रही छे, अपना किसान भाई के तय जागरूक करबा की कोशिश कर रही छे। और मिट्टी को उपजाऊ पन्नी खत्म हो जाओगो तो फिर वो पैदावार भी ना निकलेगी,
0: अच्छा उत्पादन तो, ना हो पाओगे। अगर अच्छा उत्पादन नहीं होगो तो अपना जो किसान भाई बहन छे वह ज्यादा से ज्यादा पैदावार को लाभ कैसा ले पाओगे,
1: कैसा ले पाओगे। तो मिट्टी का ताई बचावा का कुछ उपाय छे, वो अपना किसान भाई कर सके छे। जैसे किसान भाई का ढालू खेत छे, अब उमे पानी बरसे छे या पानी जाओ छे तो वो बिल्कुल बहुत तेजी से पानी बर निकल चे, उनकी जो उपजाऊ मिट्टी चे वह उपजाऊ मिट्टी बर की में चल जाओ चे, नदी नाला में चल जाओ चे, नदी नाला में चल जाओ चे तो वह फिर नदी नाला से कहाँ चल जाओगी, समुद्र तक में पहुंच जाओगी। ऊपरी सतह की जो मिट्टी चे वही सबसे ज्यादा उपजाऊ रहे, क्योंकि उमे ही आपने जैसे मान लो गोबर का खाद चे या अपना फसल का अवशेष छे वही सड़ गड़र वही
0: खाद के रूप में रेवे छे,
1: रहे छे।
0: और वही जब पानी के द्वारा भेजाऊगा
1: भेजाऊगा
0: तो फिर काहे बचेगो खेत।
1: किसान भाई यहाँ कहता है मिट्टी को स्वास्थ्य बना रखानो छे, मिट्टी का ताई बचा रखानो छे।
0: और ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती पे अगर माँ का बहन भाई जोर देगा तो उसे भी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता छे वह छोकी बनी रहेगी और उसे होबा वाली जो फसल छे पैदावार छे वह अच्छी
1: जो घड़ी छे घड़ी ने भी इशारो कर दियो तो अपना किसान भाई जो छे खरीफ की अच्छी तैयारी करे, अच्छी फसल वहां का निकले, ये लेके वो बीजोपचार भी करे, फसल चक्र भी अपनावे और अपना खुद का स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना, अपनो काम धाम समय पर करे। और इनका साथ में अब अपना अपना किसान भाई यहाँ से लिया आज्ञा तो आपका भाई अमरलाल सुमन
0: आर पिंकी है कार्यक्रम समाप्त करवा की दो आज्ञा।
1: राम
0: राम राम, राम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: अभी आप सुन रहे थे किसानवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: अभी किसान साथी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं 3.2।
6: प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
7: अभी किसान साथी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं 3.2 मेगा हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

यादों की बारात फिल्म में सुनिए आशा भोंसले किशोर कुमार को। गीत रचना मजरू की, संगीत आर डी बर्मन का ही।

0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा। ला ला ला ला ला।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ആകാശവാണി എറ്റ് 90.
1: कल आज और कल फिल्म सुनिए किशोर कुमार को गीत रचना हसरत जयपुरी की और शंकर जयकिशन का संगीत।

आन मिलो सजना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 MHz पर। श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि रात के ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय

हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉकेट टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेमा सानी चंद्र

0: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक

0: अमेरिका में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.2 मेगा हर्ट्ज पर। अब हमारे केंद्र से सुनिए गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम सफरस। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं शर्मा बंधु की गाई ये भक्ति रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम सबरस में आइए सुनते हैं पंकज उदास की गाई ये गजल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की

अभी आप सुन रहे थे सब्र इस कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये झालावाड़ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा संपन्न होती है कल प्रातः 5:55 पर। आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। शुभ रात्रि, जय हिंद।